बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल और डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर देवाशीष, अनुजा और बच्चे, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाओ दयाल चतुर्वेदी, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा विसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। बॉस्टन टी पार्टी, एक कप चाय और आजादी की चिंगारी। दोस्तों, हमारे यहाँ चाय एक इमोशन है। घर आए मेहमान को चाय, ऑफिस के ब्रेक के लिए चाय, और दोस्ती की शुरुआत भी अक्सर चाय से ही होती है। पर क्या आप जानते हैं, एक बार चाय ने पूरा रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था। साल था 1773, जगह बॉस्टन अमेरिका, और वहां ब्रिटिश सरकार ने एक नया टैक्स लगाया, चाय टैक्स। अब सुनने में लगता है बस चाय पर टैक्स ही तो है, लेकिन बात सिर्फ चाय की नहीं थी, बात थी कंट्रोल की। सोच के देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये टैक्स लगाया, पर अमेरिका के लोगों को वोट का हक नहीं दिया। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। लोग कह रहे थे, आप हमसे पैसा ले रहे हो, पर फैसला लेने का हक दे ही नहीं रहे। और जब इंसान को लगता है कि उसकी आवाज दबाई गई है, तब चिंगारी जलती है। 16 दिसंबर 1773 की ही रात थी, कुछ लोग चुपके से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ब्रिटिश शिप्स पर चढ़ गए, और उन्होंने 342 चाय की पेटियां समुन्दर में फेंक दी। सोचिए, रात का अंधेरा, समुन्दर की लहरें, और चाय के डिब्बे पानी में गिरते हुए, कितना नुकसान हुआ भाई। बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन था, हम चुप नहीं रहेंगे। इस इवेंट को नाम मिला बॉस्टन टी पार्टी। ब्रिटिश गुस्से में आ गए, उन्होंने और सख्त कानून लगाए, पर जो होना था हो चुका था। एक आइडिया जन ले चुका था, फ्रीडम का आइडिया, आजादी का आइडिया, और वही आइडिया 1776 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस तक पहुंच गया। लेकिन इस कहानी का गहरा अर्थ क्या है जानते हैं? ये कहानी बताती है कि रेवोल्यूशन हमेशा तलवार से शुरू नहीं होता, कभी कभी वो एक चाय के कप से शुरू होता है। इनजस्टिस जब रोजमर्रा की जिंदगी को छू लेता है, तब आम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाते हैं। बॉस्टन टी पार्टी ने यही दिखाया कि यूथ की पावर होती क्या है। इस मूवमेंट में ज्यादातर लोग यंग थे, उन्होंने डिसाइड किया, अगर सिस्टम अनफेयर है तो सिस्टम को हम ही चैलेंज करेंगे, और हमें ही चैलेंज करना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, हर देश में, हर युग में, जब लोग अपनी डिग्निटी के लिए खड़े हुए हैं, तब तब हिस्ट्री बनी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उस वक्त शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि चाय की पेटियां समुन्दर में फेंकना एक दिन दुनिया के सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बनेगा, पर ऐसा ही हुआ। ये छोटा सा एक्शन एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ गया। इसलिए दोस्तों, कभी अपनी आवाज को हल्का मत समझना, कभी अपने सवाल को छोटा भी मत समझना। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, चेंज तब आता है जब आम लोग खड़े होते हैं अपने अधिकार के लिए। और बॉस्टन की उस रात लहरों के साथ एक नई सोच भी उठी, एक सोच कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसे जीता जाता है। जीत कर देखिए।
1: दिल में है एक जुनून, है जज्बा भरपूर, भारत के हर कोने में है एक रोशनी नूर। तिरंगा लहराए, आसमां से बातें करे, आजादी के गीत हर दिल में बजने लगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंडियन शादी में खाना खाने जाओ तो ऐसा लगता है मास्टर शेफ का कोई फाइनल चल रहा हो। सब लोग प्लेट लेकर एकदम सीरियस फेस के साथ खड़े होते हैं, कमर पे हाथ रखकर पहले स्टार्टर्स कवर कर लेते हैं, फिर मेन कोर्स पे आएंगे और फिर वही लोग डाइट पे होते हैं अगले ही दिन से। बस कल एक चीट डे था ना, शादी का चीट डे तो चलता है।

केंड्रिक लमार फिल्म स्टार या फ्यूचर की साइंटिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी औरत की कहानी शेयर करने वाली हूं जिसके बारे में अगर स्कूल में पढ़ाया जाता तो शायद साइंस और हिस्ट्री दोनों थोड़े और इंटरेस्टिंग लगते। नाम है हेडी लमार। और ध्यान से सुनिए, अगर हेडी लमार ना होती तो शायद आप और मैं वाईफाई पर कभी कोई प्रोग्राम सुन ही ना पाते। हाँ, एक फिल्म हीरोइन और वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा अलग है ना। कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुरुआत 1930 के दशक का यूरोप। हेडी लमार ने अपना करियर 1930 के आसपास यूरोप में शुरू किया। बर्लिन और वियना के एक फिल्म जगत में उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस का चर्चा होने लगा। पर जिंदगी सिर्फ कैमरा तक सीमित नहीं रही। उनकी शादी हुई एक ऑस्ट्रियन हथियार व्यापारी से जो सेना को गोला बारूद बेचता था। सोचिए, घर में डिनर टेबल पर बातें हो रही हैं, जंग, मिसाइल, रेडियो सिग्नल्स, डिफेंस स्ट्रेटजी, और हेडी एक ज्यूइश महिला जिसे मजबूरी में परफेक्ट वाइफ बनकर बैठना पड़ता था। उनके पति के मेहमान कौन होते थे? नाजी ऑफिसर्स। एक तरफ चमक दमक की दुनिया, दूसरी तरफ अंधेरों से भरी सियासत। लेकिन हेडी सिर्फ चुपचाप रहने वालों में से नहीं थी। वो सुनती थी, ऑब्जर्व करती थी और समझ रही थी। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया। वो उस दिन शादी से भाग निकली। हाँ, बिल्कुल फिल्म जैसे, घर छोड़ा, देश छोड़ा और पहुंच गई हॉलीवुड। हॉलीवुड की चमक, एक गोल्डन एज में हेडी लमार एक बड़ी स्टार बन गई। उनकी खूबसूरती को लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहने लगे। पर दुनिया उनकी सोच को देख नहीं पाई। उस समय कैमरा के सामने एक्टिंग चलती थी और कैमरा के पीछे उनका दिमाग कुछ और ही कर रहा था। उनके पास कोई फॉर्मल साइंस की डिग्री नहीं थी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन उनके पास था तेज दिमाग और बहुत सारी क्यूरियोसिटी। उन्होंने अपने फिल्म ट्रेलर में एक छोटा सा वर्कशॉप बना लिया था। सोचिए, शॉट के बीच में बाकी लोग मेकअप, टचअप यही सब कर रहे थे और हेडी सर्किट डायग्राम्स बना रही थी। वो मछलियों और पंछियों को देखकर उनकी बॉडी मूवमेंट स्टडी कर रही थी। एरोडायनेमिक्स समझने के लिए उनका मन बहुत उत्सुक था। नेचर से बड़ा टीचर कोई नहीं, उनका यही मानना था। फिर आया वर्ल्ड वॉर टू। हेडी ने एक आर्टिकल पढ़ा रेडियो कंट्रोल्ड टॉर्पेडोज के बारे में। ये ऐसी मिसाइल थी जो दूर से सिग्नल करके कंट्रोल के थ्रू चलाई जाती थी। पर प्रॉब्लम ये थी, दुश्मन उन सिग्नल्स को जैम कर सकता था। सिग्नल ब्लॉक करो, मिसाइल बेकार। हेडी को तुरंत याद आई वो डिनर टेबल वाली बातें। उन्होंने सोचा, अगर सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी पे रहेगा तो उसे पकड़ना आसान है, पर अगर सिग्नल बार बार फ्रीक्वेंसी बदलता रहे तब दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा। यहीं से जन्म हुआ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के आइडिया का। उन्होंने एक म्यूजिक कंपोजर दोस्त के साथ मिलकर ये सिस्टम डिजाइन किया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, ट्रांसमिटर और रिसीवर दोनों एक साथ एक पैटर्न में फ्रीक्वेंसी बदलते रहेंगे, इस तरह सिग्नल सिक्योर रहेगा। उन्होंने इसका पेटेंट भी फाइल किया। और सोचिए, एक फिल्म एक्ट्रेस और एक पेटेंट ऑफिस। नेवी ने मना कर दिया, लेकिन उस वक्त अमेरिकन नेवी ने इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने रेडियो कंट्रोल टॉर्पेडोस का यूज नहीं किया और हेडी का इन्वेंशन फाइल में ही बंद होकर रह गया। कभी कभी दुनिया आपसे आगे नहीं चलती, आप दुनिया से आगे चल देते हो। सालों बाद जब वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का कॉन्सेप्ट निकाला और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बन गई वाईफाई का बेस, ब्लूटूथ का बेस। आज जब आप फोन से किसी को कॉल करते हो, जब लोकेशन मैप पर देखते हो,
जब वायरलेस हेडफोन्स लगाते हो, कहीं ना कहीं हेडी का आइडिया ही बैकग्राउंड में चल रहा होता है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो खूबसूरत थी, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो हॉलीवुड की स्टार थी, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक बॉक्स में बंद नहीं होने दिया। लोग उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस समझते थे, पर वो कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट भी थी, एक इन्वेंटर थी, एक सोचने वाली सोल थी। उन्हें उनके जीवन के आखिरी सालों में जाकर रिकॉग्निशन फाइनली मिला, अवार्ड्स मिले, रिस्पेक्ट मिली, पर उनका काम उनसे काफी पहले दुनिया को बदल चुका था। दोस्तों, कभी किसी को देखकर डिसाइड मत करिए कि वो क्या कर सकते हैं। टैलेंट सिर्फ डिग्री से नहीं आता और दिमाग सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं चलता। कभी कभी एक फिल्म सेट के ट्रेलर में भी पूरा फ्यूचर दिख रहा होता है। हेडी लमार हमें ये सिखाती हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आप सोचते हो, अगर आप डरे नहीं, तो आप दुनिया को कनेक्ट कर सकते हो, लिटरल सेंस में भी और सोच के सेंस में भी। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब वाईफाई कनेक्ट हो, एक छोटा सा थैंक्स जरूर कहना। शायद स्क्रीन के पीछे कहीं हेडी लमार मुस्कुरा रही हो। थैंक यू कर देखिए।

0: इंडियन ट्रैफिक लॉजिक। इंडिया में ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है देखो कोई आ तो नहीं रहा। ग्रीन लाइट का मतलब होता है अब सब एक साथ भागो। और हॉर्न का मतलब होता है मैं जिंदा हूं, मुझे नोटिस करो।
1: What?

24 फरवरी 1739, 3 घंटे और बदल गया भारत का इतिहास। दोस्तों, हिस्ट्री अक्सर किताबों में शांत लगती है, डेट्स लिखी होती हैं, नाम भी लिखे होते हैं और हम पढ़कर आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर की एंट्री नहीं होती, वो एक सिविलाइजेशन का टर्निंग पॉइंट होती हैं। ऐसी ही एक तारीख थी 24 फरवरी 1739, जगह करनाल। एक तरफ मुगल साम्राज्य, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था, और दूसरी तरफ पर्शिया के शासक नादिर शाह। बैटल शुरू हुई, घमासान युद्ध, और सिर्फ 3 घंटे में मुगल सेना पूरी तरह टूट गई। 3 घंटे, बस इतना ही वक्त लगा एक पूरे एम्पायर की कमजोरी दुनिया के सामने आने में। सोचिए, मुगल सल्तनत ने शाहजहां के दौर में ताजमहल बनवाया, जिसका खजाना सोना चांदी से भरा हुआ था, जिसका नाम सुनकर यूरोपियन ट्रेडर्स रिस्पेक्ट से झुकते थे। वही साम्राज्य 3 घंटे में पूरा हिल गया। लेकिन सवाल यह है, क्या मुगल एम्पायर उस दिन हारा, या वो पहले से ही धीरे धीरे अंदर से कमजोर हो रहा था? हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स कहते हैं ये हार अचानक नहीं थी। कोर्ट पॉलिटिक्स, अंदर के झगड़े, कमजोर लीडरशिप और आउटडेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ये सब पहले से ही चल रहा था। नादिर शाह ने बस एक दरवाजा नॉक किया जो पहले से ही ढीला हो चुका था, और फिर वो दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली, जो तब दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हुआ करता था, और वहां से ले जाया गया खजाना, सोना चांदी, तख्ते तौस और दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर। कहते हैं इतना माल लूटकर नादिर शाह इतना अमीर हो गया कि उसने अपने देश में कुछ समय के लिए टैक्स माफ कर दिए, पर भारत के लिए ये एक साइकोलॉजिकल झटका था। ये सिर्फ धन की चोरी नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस का कोलैप्स था। उस दिन के बाद मुगल एम्पायर कभी पहले जैसा नहीं रहा। रीजनल पावर्स उभरने लगी, मराठास, सिक्स, नवाब्स सब अपनी जगह मजबूत होने लगे, और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मौका मिल गया। एक छोटी सी बैटल, लेकिन उसका चेन रिएक्शन इतना बड़ा कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप बदलने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है जानते हैं? लेसन ये है कि जब लीडरशिप वीक हो जाती है तो खतरा बाहर से नहीं, पहले अंदर से आता है। एम्पायर्स तलवार से नहीं गिरती, अंदर की लालच, ईगो और मिसमैनेजमेंट से गिरती हैं। और ये सिर्फ 1739 की बात नहीं थी, ये हर युग का सच है। आज भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम, कोई देश अंदर से डिवाइड हो जाए तो 3 घंटे नहीं, 3 मिनट भी काफी होते हैं। हिस्ट्री हमें डराती नहीं, हिस्ट्री हमें जगाती है। इसीलिए करनाल की बैटल सिर्फ एक वॉर नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। वार्निंग की पावर को संभालना पड़ता है, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और लीडरशिप को जिम्मेदारी से निभाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई हिस्टोरिकल डेट सुनो, उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मत समझना, उसके पीछे छुपा पैटर्न समझना और सीख समझना, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर उसके लेसन्स बार बार रिपीट होते हैं। याद कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंडियन पेरेंट्स और उनके कंपैरिजंस बचपन से सुनते आए, देखो शर्मा जी का बेटा। अब बड़े हो गए तो सुनते हैं, देखो शर्मा जी के बेटे ने शादी भी कर ली। मतलब शर्मा जी का बेटा ना हुआ, कोई नेशनल बेंचमार्क हो गया।

एक किताब जिसने दुनिया हिला दी, अलाउदा इकुआनो की कहानी। दोस्तों, हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और जंगों की कहानी नहीं होती। कभी कभी एक आम इंसान जिसके पास ना सेना होती है ना ताकत, सिर्फ एक कलम होती है, और वही कलम दुनिया की सोच हिला देती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूं, नाम शायद आपने स्कूल की किताबों में ज्यादा न

1945 के आसपास का समय है ये। अफ्रीका के नाइजीरिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। उसका घर, उसका परिवार, उसकी मिट्टी, सब कुछ अपना, सब कुछ सुकून से भरा। लेकिन किस्मत, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 11 साल की उम्र में, हाँ सिर्फ 11 साल में, इक्वानो को उनके गांव से अगवा कर लिया गया। उन्हें और उनकी बहन को अलग अलग कर दिया गया। एक पल में बचपन टूट गया। उन्हें समुन्दर के रास्ते दूर देशों में ले जाया गया। उस समय एक बहुत ही कठोर व्यवस्था चल रही थी। लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेचा जाता था। इंसान को सम्मान की तरह इधर से उधर ले जाया जाता था। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो कल तक मां की गोद में था, आज एक अंधेरी शिप में, बिल्कुल अंधेरी शिप में बंद था, समुन्दर के बीचों बीच, डर के साथ, भूख के साथ, बेइज्जती के साथ। ये सफर सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये आत्मा को तोड़ देने वाला सफर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इक्वानो ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने समझा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। कई सालों तक उन्होंने काम किया, पैसे जोड़े और आखिरकार अपनी आजादी खरीद ही ली। सोचिए, जिसे बचपन में बेचा गया था, वो एक दिन अपनी ही आजादी खरीद कर आजाद इंसान बन गया। ये भी एक जीवन है दोस्तों, ये भी एक जीवन है। लेकिन आजादी, आजादी पाना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उन्होंने सोचा, सिर्फ मैं आजाद हो जाऊं इतना काफी नहीं है, दुनिया को सच पता चलना चाहिए। और फिर उन्होंने लिखी अपनी कहानी, अपनी जिंदगी का सच, दर्द, अपमान, समुंदरी सफर, टूटना, उठना, सभी कुछ। उनकी किताब 1789 में छपी और लोगों ने जब उसे पढ़ा तो उनके दिल हिल गए। पहली बार यूरोप और ब्रिटेन के लोगों ने एक गुलाम की जुबानी उसका सच सुना। जो कहानियां दूर लगती थीं, वो अचानक जीती जागती हकीकत बन गईं। इक्वानो सिर्फ एक लेखक नहीं बने, वो एक आवाज बन गए। वो शहर शहर गए, लोगों से मिले, सभाओं में गए और बोल उठे। उन्होंने कहा, इंसान को रंग, जात या जमीन के हिसाब से मत तोलो, इंसान इंसान होता है। उनकी किताब इतनी मशहूर हुई कि कई बार दोबारा छपी। लोग उसे खरीद कर पढ़ते थे। घरों में, बैठकों में चर्चाएं होने लगी और धीरे धीरे ये चर्चा एक आंदोलन में बदल गई। ब्रिटेन में गुलामी के व्यापार के खिलाफ आवाज तेज होने लगी। लोग सवाल पूछने लगे, ये व्यवस्था गलत है, ये अमानवीय है। आखिरकार 1807 में ब्रिटेन ने स्लेव ट्रेड को गैर कानूनी कर दिया। एक छोटे से गांव का बच्चा, जिसे दुनिया ने कभी गिना भी नहीं था, उसकी कहानी ने एक साम्राज्य को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सबक है। कभी कभी तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है। कभी कभी एक सच्ची कहानी हजारों नारों से ज्यादा जोर से बोलती है। इक्वानो ने दुनिया को यह सिखाया कि दर्द को छुपाना नहीं चाहिए, उसे शब्द देने चाहिए। अगर वो चुप रहते, अगर वो कहते मेरी जिंदगी मेरी तकलीफ तक सीमित है, तो शायद इतनी जल्दी बदलाव नहीं आता। आज जब हम आजादी, इंसानियत और बराबरी की बातें करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब आसानी से नहीं मिला। किसी ने कहानी लिखी,

किसी ने सच बोला, किसी ने रिस्क लिया और किसी ने वो जीवन सच में जिया। इकवानों की कहानी हमें ये बताती है कि पढ़ाई और लिखाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होती, वो इंसान को सोचने की, सवाल करने की और बदलाव लाने की ताकत देती है। सोचिए, अगर एक बच्चा जिससे सब कुछ छीन लिया गया था अपनी कलम से दुनिया को जगा सकता है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हर इंसान के पास एक कहानी जरूर होती है, शायद आपकी भी, और हो सकता है आपकी कहानी भी किसी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे या बदलने की ताकत रखे। दोस्तों, इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, इतिहास समझने के लिए होता है। और अलाउद्दीन इकवाना की ये कहानी हमें एक सीधा सा संदेश देती है, सच बोलने से डर मत, अपनी कहानी को छुपा मत, क्योंकि कभी कभी एक सच पूरी दुनिया को आजादी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देता है। ये थी एक कहानी एक इंसान की जिन्होंने कलम से इतिहास लिखा। याद करके देखिए।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। आइए सुनते हैं एक गीत, शीर्षक है चलना सीखो।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए। आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर। दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता। नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

अच्छे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे भावना और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभिल 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं हम उनका जीवन परिचय।
2: मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए के उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्या दुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मेनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अवुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है।
3: मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था, काफी वसी और पक्का मकान था, रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटेरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वर मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास

बस में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा।
मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्स स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुदएतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा, मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट

हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे अम्मा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का, मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं बसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे, मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खसूसी मजमून चुनना था, यानी अपनी स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुतासर किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडले, प्रोफेसर नरसिंह राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, मेरे एप्टीट्यूड्स और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और लगन है उस शोबे में जाने के लिए। प्रोफेसर KAV पंडले ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका तज्जिया भी, विश्लेषण, एनालिसिस भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया लेकर आते थे कोर्स में। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बयक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं 1 हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊं। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है
एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तखलीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्र कर दिया गया 250 रुपए की महाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी यकताई खो बैठे हैं, बल्कि हमने एक और ही किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं और बेरहम भी, हसास भी हैं और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतही। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेढब नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम के सुकून और गहरे शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हावरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MGK मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला, मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकोस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर MGK मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया।

0: कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। ये मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर MG के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी तबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारामद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार होंगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें। और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तखलीक की तरह SLV-3 की तखलीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिरदे का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता, और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को जो रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज सारी मसरूफियत बेमाने लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमाने लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा जैनुल आबदीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वर में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, न अखबारों ने स्याह हाशिए दिए, न सियासतदान थे वो, न विद्वान कोई, न कोई बड़े सरमायेदार, एक सीधे सादे इंसान थे, फरिश्ता सिफत। और हर उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है। मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे। SLV-3 अपोजी रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी मां की मौत की खबर पहुंची। यके बाद दीगरे 3 मौतें हो गई मेरे घर में। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की जरूरत थी। 100% लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकम्मल नीति और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया था। 23 मीटर लंबा, 4 स्टेजेस का यह रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी कजदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया। हम सब दम बखुद रह गए, सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, नुचड़ गया बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक और बहस मुबासे के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने सर, मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी, और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं दिल को ढारस देता रहा। ये ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में, जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए।
1: मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है।
0: मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत मैं यहां पहुंचा था। वो लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाने से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था। मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्ला खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। पहली जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकट रमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा ब दर्जा मिसाइल तैयार करने के, हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टैक्टिकल कोर वेहिकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना खाब रेक्स को, यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को, मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकई हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो, या आम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे।

अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए ये फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, यह बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया, पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल केएन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपले लगाएंगे, मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले, कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। पदम पदम सही निकला, मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर ली हो, जैसे सबक याद कर लिया था, हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खुली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने

0: तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है, अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। '1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए।
1: दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए रेडियो टंटाविल 90.8 FM छाबो की आवाज, RJ भावना के साथ। बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
1: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
1: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
1: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
5: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
5: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
5: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
5: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
5: और डॉक्टर साहब,
6: क्या फाइलेरिया की
5: बचा जा सकता
3: है? जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
5: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
5: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इस रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
5: अच्छा। जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
3: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
6: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
5: जी
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
5: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
7: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
8: खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टंट्या भील 90.8 कि ऐप के माध्यम से भी आप खेती बाड़ी कार्यक्रम को सुन सकते हैं, साथ ही आप आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425413603 पर। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम हर रोज एक नए विषय पर आपको जानकारी देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक लेकर आते हैं, और साथ ही हम हमारे जो किसान हमसे जो आते हैं आग्रह करते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि उनके जो समस्याएं हैं उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे एक किसान ने कड़कनाथ के ऊपर हमें कुछ महत्व जानकारियों के लिए हमें आग्रह किया था, इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हम कड़कनाथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबवा की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबवा ब्लॉक के कलीपुरा गाँव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया। अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है। आपको मिलवाते हैं रीता जी से, उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना, आइए सुनते हैं अब रीता जी से, जो कि झावा ब्लॉक के अंतरवेला के पास स्थित कलीपुरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: नाम क्या
2: है? रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए उनके?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते ये। अच्छा। बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

0: सकता है, योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
1: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
2: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पे हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको हम कार्य कर रहे हैं।
1: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो

0: लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियाँ, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है जिसका नाम है आरबी ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
1: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं, तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
0: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
1: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे, उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की।
0: राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह, अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना हो।

0: कर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
1: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, 100% बच्चों का देखरेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है, उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, अगर करें 100% करें।
0: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
2: तो आपको इस ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सके।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पालें पहले, अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
2: बिल्कुल
3: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
2: बिल्कुल
3: कितने बिक रहे हैं
2: बिल्कुल
3: है ना,
2: बिल्कुल
3: और कितना खा रहे हैं,
2: कितना खा रहे हैं,
3: वो सब अनुमान लग जाएगा।
2: हाँ।
3: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
2: फार्म बनाना पड़ेगा
3: उसको
2: बिल्कुल,
3: और थोड़ा ऊंचाई में रहना है चाहिए वो।
2: अच्छा, ऊंचाई में होना चाहिए
3: कम से कम 13-14 फीट।
2: बिल्कुल।
3: उससे क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी उसको।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और फिर उसके पहले बनने के बाद फिर ये लकड़ी का भूसा रहता ना, छुरी को डाल देने के नीचे
2: बिल्कुल,
3: और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी
2: बिल्कुल, इनको लाइट की जरूरत रहती है,
3: लाइट बहुत गर्मी उसको चाहिए।
2: अच्छा, गर्मी ज्यादा चाहिए।
3: हाँ। और ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक होनी चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना
2: है। वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
3: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का।
2: अच्छा,
3: क्या है कि वायरस आ जाए,
2: वायरस आने के डर,
3: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है, ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु रहते हैं ना,
2: अच्छा,
3: चप्पल से है,
2: अच्छा सारे से,
3: वो उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं।
2: अच्छा।
3: और चूने में गिर जाते हैं, मर जाएंगे,
2: मर जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर सकते
3: हैं। अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
2: अच्छा लाइट,
3: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको,
2: बिल्कुल लगातार उसको जलाते रहना चाहिए।
3: जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ,
2: बिल्कुल
3: वो छोटे वाले।
1: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: अच्छा। मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है मेरे दादाजी के लिए हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए, तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गियां लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया, और करते करते वो 40 हो गई, और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे, तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: भारत बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की, और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
0: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है। साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं, और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बैबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बैबकॉक की 80-85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।
5: ने एक मुर्गी से एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200 से 250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200 से 250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं, तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया उनकी किसान की आमदनी होती है। तो अगर 4 लाख से 5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है, तो लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है, और ये जो आमदनी होते ये रोज का आमदनी है।
3: कौन सी किस्म आपको चुननी है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 250 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं।
2: देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में है। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है, वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है, मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए, और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गियां खरीदते मुर्गी हमारी खुद की रहती, मुर्गे खरीदते और हर महीने मुर्गा बेच देते। तो हम हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200 से 500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली एनसीआर में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते हैं।
3: सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फसलों में और जीव जंतुओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलते वातावरण में कैसे हम हमारे पशुओं को, हमारे चूजों को वातानुकूलित रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
3: मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे, वहां से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे, ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए, यानी अगर आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1000 से 1500 वर्ग फुट के आवास की जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में खिड़कियों को बोरों से ढककर रखना होगा और अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे, जबकि गर्मियों में उन्हें अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होगा। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे से ही दाना खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे, बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27 से 28% कैलोरी होनी चाहिए, साथ ही 3 से 4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
5: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध है, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गांबोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए, उसमें रानीखेत दो बार लगाते हैं और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए, जो सारे बीमारी। और हमने जो किसान को बोलते हैं, आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए, तो उसके रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है।
3: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसेल संक्रामक रोग और मैरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मैरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मैरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2 से 3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। के पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, समय समय पर क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे

0: जाना चाहते हैं तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें। दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM के साथ।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम टूट भी जाते हैं और वहीं से हम खुद को दोबारा बनाना सीख जाते हैं। आज की हमारी कहानी और गेस्ट, उनकी जर्नी, उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है। पेन से पर्पस तक का एक बहुत ही खूबसूरत सफर, एक सोलफुल जर्नी। प्लीज वेलकम लवीना झालानी जी, जो एक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हैं, फाउंडर ऑफ कुशा डिवाइन होम हैं और एक ऐसी हीलर हैं जिन्होंने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि सबसे पहले खुद को हील किया। तो चलिए आज का जिंदगी के रंग गीतों के संग आगे बढ़ाते हैं लवीना झालानी जी के साथ। तो लवीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं।
1: जी, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज आप बहुत कुछ कर रहे हैं और वो बहुत न्यू फील्स है हमारे लिसनर्स के लिए। तो हम डायरेक्ट डाइव करते हैं हमारे पहले सवाल से। आपने बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन मुझे कही थी कि आपने प्राणिक हीलिंग को नहीं चूज किया, प्राणिक हीलिंग ने आपको चूज किया। तो वो कौन सा फेज था मैम, कौन सा एक मोमेंट था, एक चेंजिंग टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जहां पे आपको ये रियलाइज हुआ कि यू नो दिस इज माई लाइफ पाथ और ये सिर्फ एक लर्निंग नहीं है बल्कि मेरी लाइफ का पर्पस है? वो क्या मोमेंट था या क्या सेट ऑफ इवेंट्स थे जिसने आपको यहाँ लीड किया?
2: तो ऑनेस्टली मुझे आज भी यही लगता है कि प्राणिक हीलिंग को मैंने चूज नहीं किया बल्कि कहीं ना कहीं प्राणिक हीलिंग ने ही मुझे चूज किया है। तो लाइफ का एक ऐसा फेज आया था जब बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन बढ़ता चला जा रहा था, एक एम्प्टीनेस थी। मैं एक ऐसी जर्नी पर थी जहां मैं खुद को समझाने या इमोशनल बैलेंस पर इनर स्ट्रेंथ की तलाश में थी। मैं कोशिश कर रही थी ये सब वापस लौट कर आए। पर जब मैं पहली बार प्राणिक हीलिंग मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होती है बल्कि एनर्जी, इमोशनल और सोल लेवल पर भी होती है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद के अंदर फील किया। मैं पहले से बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करी, इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करी और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मुझे ये लगा कि ये हीलिंग मुझे वापस खुद से कनेक्ट कर रही है। तो शायद मैं भी और किसी की लाइफ में छोटी सी होप या एक छोटी सी लाइट वापस ला सकती हूँ। वही एक मोमेंट था जब मुझे समझ में आया कि ये मेरी लाइफ की लर्निंग नहीं है, ये मेरी लाइफ की एक कॉलिंग है।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जर्नी मैम आपने बताई और बहुत डेफिनेटिव मोमेंट्स होंगे वो जब आपने अपने आप को एक्चुअली एक्सटर्नल की जगह इंटरनल शिफ्ट लिया एंड दैट इज व्हेन आपने टैप किया अपने अंदर के सोर्सेज, आपके अंदर की एनर्जीज। एंड बहुत ही खूबसूरत सफर रहा आपका जैसे आपने बताया। इसी एहसास के साथ, इसी खूबसूरत जवाब के साथ हम सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत, आशाएं, फ्रॉम द फिल्म इकबाल।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक लवीना जी। आपने हमें बताया कि आपकी पर्सनल जर्नी में बहुत सारे इमोशनल फेजेस आए मैम, जो मैं आई लीव इट टू यू इफ यू वांट टू डिस्कस देम स्पेसिफिकली, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम अगर आप बताना चाहें। बट मुझे ये जानना है कि जब ऐसा वक्त किसी के जीवन में आता है तो नेचुरली अंदर से आप टूट जाते हो, अब मतलब शैटर हो जाते हो, तो खुद पर वापस भरोसा करना कितना डिफिकल्ट होता है। और बिकॉज आप एक हीलर हैं, तो आपने क्या मेथड्स अपनाए अपने आप को दोबारा बिल्ड करने के लिए एंड टू बी वेयर यू आर टुडे? वो क्या जर्नी थी मैम?
1: तो प्रेगनेंसी का जो लॉस होता है ना, वो एक वेमेन को पूरी तरीके से तोड़ देता है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता है, आपको बहुत डीप लेवल तक इमोशनल और मेंटल पेन भी देता है। और एक मदर या एक वेमेन ना इसे वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरे लिए वो फेज एक्सट्रीमली पेनफुल रहा और मैं कम्प्लीटली इमोशनली शैटर हो गई थी। मैंने बेस्ट डॉक्टर्स, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटने लगा और कुछ एक्सटेंट तक खुद पे भरोसा भी। लेकिन उस पेन ने मुझे एक बहुत पावरफुल लेसन दिया, ब्रोकन का मतलब हमेशा फिनिश नहीं होता। थ्रू प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर्स एंड सॉर्ट ऑफ इनर हीलिंग ने मुझे धीरे धीरे समझाया कि खुद से कनेक्ट करे रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सबसे पहले अपने पेन को सप्रेस नहीं किया और उसे एक्सेप्ट किया कि ये मेरे साथ हो चुका है, और फिर धीरे धीरे उसे हील करा। मंत्रा वर्ड वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। और आज जब मैं अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ तो दिल से लगता है कि लाइफ ने मुझे सिर्फ टेस्ट नहीं किया है, लाइफ ने मुझे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो लेसन सिखाया वो ये है कि हमेशा होल्ड अप नहीं करना और लेट गो करने देना चीजों को और इमोशंस को, आपके पास्ट को जाने देना और आगे बढ़ते चले जाना।
0: ट्रूली जितना हम उसे होल्ड करते हैं उतना वो पेन आई थिंक बढ़ता जाता है, एंड हम सेल्फ इन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं एक पॉइंट के बाद, और हम उसे वैल्यू करने लग जाते हैं, रिवेल करने लग जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम समझने की जगह हम उसको एक स्टेट ऑफ अफेयर बना लेते हैं अपने जीवन का। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पॉइंट आउट किया कि कैसे लेट गो करना, एंड सबसे पहले एक्नॉलेज करना अपने ग्रीफ को, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, एंड देन वो जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है उनको पास करना। सो आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रन, उनका क्या नाम है, हमारी पूरी एसएन फैमिली उन्हें हेलो कहना चाहेगी।
1: तो मेरे बेटे का नाम है राम।
0: ओके, वाओ।
1: और मेरी बेटी का नाम है राध्या।
0: ओ ब्यूटिफुल नेम। तो राम एंड राधिया, हम आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं एसएन फैमिली की तरफ से, आपको हेलो, हाय एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर फ्यूचर।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। मैम आगे चलते हैं। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बिकॉज कई बार जैसे हमने डिस्कस किया कि हम पेन को गले लगा लेते हैं, उसके साथ रहना सीख लेते हैं और उसको एक स्टेट ऑफ अफेयर मान लेते हैं, बट इसी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जिन जिन ने आपको शायद हर्ट किया है आपके रास्ते में, जो आपकी जर्नी में लोग आए हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं यू नो दुख पहुंचाए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फॉरगिवनेस से काम करना और लेट गो करना उन लोगों को ब्लेस करके कि ठीक है ये हो गया एंड नाउ यू नो वी आर डन एंड डस्टेड विद इट। तो लेट गो करने के लिए ये फॉरगिवनेस वर्क, ये मेडिटेशन, ये जो पूरी जर्नी है जो आपने अपनाई अपनी लाइफ में, वो कैसी थी और कितना इम्पोर्टेंट है सच में किसी को फॉरगिव करना खुद को फ्री करने के लिए?
1: सो फॉरगिवनेस वर्क और मेडिटेशन ने मेरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहले मुझे लगता था कि फॉरगिवनेस का मतलब है सामने वाले को सिंपली माफ कर देना या ये मान लेना जो भी हुआ वो सही था या डेस्टिनी थी। लेकिन धीरे धीरे प्राणिक हीलिंग फॉलो करने के बाद मुझे एक बहुत ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग आई, फॉरगिवनेस जनरली सामने वाले के लिए नहीं होती है, ये हमारे खुद के पीस और हमारे खुद के अटैचमेंट जो हम पास में ग्रजेस रख के बैठे हैं उसके लिए होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स और अपने क्लाइंट्स को यही एग्जाम्पल से समझाती हूँ से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी एक पानी से भरी हुई बॉटल दूं और मैं बोलूं आपको इसे 5 मिनट तक हाथ में पकड़े रखना है, आपको शायद इजी लगेगा कि ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है। मैं बोलूं अब आप इसे 1 घंटे तक पकड़े रखिए, थोड़ा सा आपके हाथ में पेन चालू होगा। नाउ मैं नेक्स्ट बोलूंगी इसे 2 दिन तक हाथ में इसी तरीके से पकड़े रखिए, टू एन एक्सटेंट आपका हाथ इतना स्टिफ हो जाएगा कि आप उसे मूव भी नहीं कर पाओगे। अब चीज क्या है, बॉटल भी सेम है, उसके अंदर जो पानी है वो भी सेम है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग दैट बॉटल वो बढ़ गया है जो आपको अब हर्ट दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने पास्ट को, अपने एंगर या रिसेंटमेंट को

0: वापस सिखाने आई।
1: तो
0: मेडिटेशन ने मुझे रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सिखाया, थोड़ी देर शांत बैठ के पूरी पिक्चर को देखना समझाया, और फॉरगिवनेस ने मुझे बहुत डीप लेवल तक लेट गो करना सिखाया ताकि मैं खुद को अंदर से हील कर सकूं।
1: बहुत ही।
0: और जब आप जेन्युइनली सिंसियरली फॉरगिव करना स्टार्ट करते हो तो एक अंदर जो हैवीनेस है वो आप धीरे धीरे डिसॉल्व करते हो, और ये ही आपकी ट्रू फ्रीडम है जो आपको खुद से बिल्कुल फ्री कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल आपने हमें बताया। जब आप कह रहे थे तो मैं इमेजिन कर रही थी पैरेलली कि वो कैसा होगा वो फीलिंग, कि सच में कितनी स्टिफनेस आ जाएगी, और वो स्टिफनेस सिर्फ एक मतलब एग्जांपल के तौर पर नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी में आ जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया। अब प्राणिक हीलिंग के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज हमारे लिसनर्स जो हैं वो बहुत ले पीपल हैं जिन्होंने शायद नहीं जानते कि प्राणिक हीलिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो अगर कुछ बेसिक्स अगर आप बता सके प्राणिक हीलिंग के बारे में मैम।
0: तो प्राणिक हीलिंग एक नो टच थेरेपी है, ये मास्टर चुआ ने दी है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टडी करी है, और हम जैसे नॉर्मल लोगों को मोडालिटी दी है जिससे बोलते हैं प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में दो पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट इज हीलिंग एंड अदर पार्ट इज मेडिटेशन।
1: राइट।
0: सो आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द सीनियर्स टेलिंग इन द क्लास, जब उन्होंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन दिया था
1: जी,
0: बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है 20 मिनट का। तो जो मठों में लामा वगैरह होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, उन्होंने काफी आर्ग्यूमेंट किया था कि आपने 20 मिनट में वो दे दिया जो हम शायद 20 साल की तपस्या में फील कर पाते हैं।
1: राइट।
0: तो ये जो पूरी मोडालिटी है ये चक्रा बेस्ड और एनर्जी बेस्ड मोडालिटी है। वी डू नॉट टच आवर क्लाइंट, हम इसे डिस्टेंसली करते हैं, और आपके चक्रा की जो है उसे क्लेंस और एनर्जाइज करने पे फोकस करते हैं, इसीलिए ये और मोडालिटी से पूरी तरीके से अलग है।
1: राइट। थैंक यू सो मच मैम हमें बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा ले पर्सन हैं और वो जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली प्राणिक हीलिंग किस तरह से काम करती है। जैसे आपने बताया चक्रास को हील करती है, विदाउट टच हील करती है, और मेडिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। हम हमारे अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आज का अगला गीत फिर से उठ चला फ्रॉम द फिल्म रॉकस्टार।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, इंस्पिरेशन से भरा। आगे चलते हैं लवीना जी, आपने बताया कि प्राणिक हीलिंग आपके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, और मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि कोई भी इंसान जो एनर्जी हीलिंग में है, इस तरह की प्रैक्टिसेस में है, वो आई थिंक उसके लिए ये सच में सिर्फ एक प्रोफेशन से बहुत बढ़ के होता है। ये ह्यूमैनिटी को टच करने जैसा होता है, सेवा जैसा होता है, जैसे आपने बताया। तो आप जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है, जब आप किसी इंसान का स्ट्रेस, उनका फियर, उनका इमोशनल पेन हील कर पाते हैं, उसके बाद वो जो फील करते हैं, जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपको क्या फीलिंग देते हैं? और इसी के साथ अगर आप कोई एक क्लाइंट एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मूविंग एक्सपीरियंस जो आपको आज भी याद है, वो अगर साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: बिल्कुल सही है। प्राणिक हीलिंग मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत डीप डाउन मेरे हार्ट से कनेक्टेड है और मैं ऐसे एक सेवा के जैसे भी देखती हूँ। तो जब कोई पर्सन स्ट्रेस, फियर, इमोशनल पेन या कंफ्यूजन के साथ मेरे पास आता है या मेरी क्लास में बैठता है, और क्लास के बाद जब वो मुझसे कंफ्यूजन के साथ मेरे पास आता है या मेरी क्लास में बैठता है और क्लास के बाद जब वो मुझसे फीडबैक देता है और कहता है कि लवीना जी बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत टाइम बाद एक शांति सी महसूस हो रही है, तो जनरली मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं अपनी खुशी जाहिर कर सकूं, क्योंकि उस मोमेंट पर आप सिर्फ एक इंसान को हील नहीं करते हो, आप देखते हो कि उसके अंदर वापस जीवन जीने की एक होप वापस आ रही है, जो सिर्फ टेम्पररी नहीं है, जो वो क्लास के दौरान सीख रहा है और एक स्पिरिचुअल टूल अपने साथ लेके जा रहा है जो
0: बिल्कुल
1: आगे लाइफ में उसे हर फेज पर सपोर्ट करेगी। मास्टर चोकोक्स की टीचिंग्स ने मुझे ये समझाया कि हीलिंग सिर्फ टेक्निक नहीं होती है, हीलिंग में कंपैशन, आपका इंटेंशन और जेन्युइन सर्विस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। ऑनेस्टली कभी कभी मैं जब अपने बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में सोचती हूँ और मैं ये रियलाइज करती हूँ कि लाखों लोगों के बीच में गुरु ने आपको ट्रेनर बनाया और उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करने का एक मौका दिया, तो मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ कि आप किसी की लाइफ को टच करके उसे हील करना सिखाते हो, उसे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अगर किसी का पूरी तरीके से पेन नहीं भी हटा पा रहे हो तो उस अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला पा रहे हो। तो

0: मैं मेरे बच्चों का ही एग्जाम्पल दूंगी. तो मेरा जो बेटा है ही वॉज बर्न सेकेंड डिग्री. तो मेरी
1: ओश
0: पूरी फैमिली प्राणिक हीलर है. एंड फाइव मतलब हम लोग को यही था कि वेदर ही विल सर्वाइव और नॉट. ही
1: जी
0: वॉज जस्ट 9 months ओल्ड बेबी एंड उसका पूरा बैक चल गया था. राउंड द क्लॉक उसकी हीलिंग हुई. 5 days ही वॉज एडमिटेड एंड डॉक्टर्स वर ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, मतलब इतनी जल्दी हीलिंग कैसे हो गई. थैंक्स टू द गुरु एंड थैंक्स टू यूनिवर्स एंड माई कम्प्लीट फैमिली जिन्होंने उसको हील किया, क्योंकि उस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं थी, बच्चे के साथ थी. वो एक फेज ऐसा था तब मुझे लगा कि जितने भी बर्न केसेस हैं मुझे हॉस्पिटल जाके लोगों को हील करना चाहिए. जो आप देते हो वो आपके पास पलट के आता है. मैंने कई लोगों की फ्री हीलिंग करी है बर्न केसेस में. वो डर एक कर्मा मेरे पास रिपीट होके आया.
1: जी आई कैन इमेजिन हाउ वो फेस किस तरह से आपको झंझोर के रख देता होगा. आई होप योर सन इज ऑल फाइन नाउ एंड
0: ही इज परफेक्टली वेरी नॉटी नाउ.
1: गुड गुड गुड. वी आर सेंडिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम इवन नाउ एज वी स्पीक. एंड आपने सच कहा कि अगर कंपैशन नहीं है, डिवाइन आपका इंटेंशन नहीं है, तो ये काम आप नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं आपको बियॉन्ड अपने प्रोफेशनल डोमेन से निकल के बहुत पर्सनल होना पड़ेगा टू डू सच वर्क. और बहुत खूबसूरत काम आप कर रहे हैं मैम, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. आगे चलते हैं और आपका जो वेंचर है, आपका जो बेबी है, कुशा डिवाइन होम, आपका एक और बेबी है एक्चुअली. आई थिंक यू हैव 3 किड्स, जो आपकी हीलिंग जर्नी का एक एक्सटेंशन है, जहां पे आप क्रिस्टल्स, अतर और स्पिरिचुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स की तरह नहीं देखते बल्कि एक एनर्जेटिक सपोर्ट की तरह देखते हैं. तो अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा बता सकें कि ये किस तरह से काम करता है, एनर्जी और इंटेंशन का क्या कनेक्शन है, और ये जो आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कुशा डिवाइन होम में, ये किस किस तरह से कहाँ कहाँ तक हीलिंग कर सकते हैं, क्या इनका पर्पस है, कैसे आप इनको डिवाइस करते हैं?
0: कुशा डिवाइन मेरे लिए मेरी हीलिंग जर्नी का एक नेचुरल एक्सटेंशन है. मैं क्रिस्टल और अतर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखती हूँ. मेरे लिए ये एक एनर्जेटिक सपोर्ट टूल है. जैसे हर क्रिस्टल की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अतर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है इंटेंशन. एनर्जी हमेशा आपका इंटेंशन फॉलो करती है. जो आप सोचते हो वो होता है, वो ही आप अट्रैक्ट करते हो. इसलिए कुशा डिवाइन में हम रेडीमेड क्रिस्टल्स रैंडमली डिस्पैच नहीं करते. हम पहले अपने क्लाइंट का पूरा इंटरव्यू लेते हैं, उसका इमोशनल स्टेट, वो क्यों हमसे क्रिस्टल बाय करना चाह रहा है, उसका क्या एनर्जी पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एक न्यूमरोलॉजिक वैदिक चार्ट क्रिएट करते हैं. करेंटली उसकी कौन सी दशा या अंतर दशा चल रही है
1: जी
0: वो समझने की पूरी कोशिश करते हैं एंड उसके बाद उसे कोई भी क्रिस्टल सजेस्ट किया जाता है. जैसे ही वो अपना चूज कर लेता है क्रिस्टल जो भी उसे बाय करना है, हम उस क्रिस्टल को फिजिकली क्लेंस करते हैं ताकि जो भी पहले की एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल है तो वो अच्छी बुरी दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो जितनी भी पहले की नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव कर सके. फिर उस क्रिस्टल को हम स्पेसिफिकली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 days वी चार्ज इट विथ स्पेसिफिक मंत्र प्राणिक हीलिंग होते हैं. हम उसे खुद पर्सनली चार्ज करते हैं ताकि उस पर्सन को अपनी लाइफ में कोई भी इमोशनल फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप इश्यू आ रहा है वो उससे बहुत इजीली डील कर सके. तो मेरे लिए रिचार्जिंग एक रिचुअल नहीं है, ये एक एनर्जी प्रोसेस है. मैं खुद को बहुत प्राउडली अलग इसलिए कहती हूँ क्योंकि वी जस्ट डोंट सेल. हम उसके बाद आपने क्रिस्टल पहन लिया, हम उसे 2 दिन बाद फिर सेल्फ रिचार्जिंग करने का भी तरीका बताते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि उसकी एनर्जी, अगर हम फोन आज बैटरी से चार्ज करेंगे कितनी लाइफ है उसकी, 2 दिन, तीसरे दिन हमें फिर से चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना. ये चीज कोई नहीं बताता.
1: राइट.
0: तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने क्रिस्टल्स को रेगुलरली चार्ज करें. और मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिस्टल्स मैजिक शॉर्टकट नहीं है. आपकी हीलिंग और आपकी ग्रोथ हमेशा आपकी इनर वर्क से आती है. लेकिन राइट क्रिस्टल, राइट गाइडेंस और राइट इंटेंशन से अगर वो चार्ज है तो आपकी ग्रोथ बहुत ईजिली हो जाएगी. जितने भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एकदम साइड होके चली जाएगी।
1: कोई एक दो अगर क्रिस्टल्स के बारे में हमें बता सके या अतर्स के बारे में, आपके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके मैम जो आपको लगता है कि
0: रोज क्वार्ट्ज बेचती हूँ या फिर हम सेल करते हैं सिट्रीन। तो रोज क्वार्ट्ज बेसिकली आपका शुक्र प्लैनेट फ्राइडे को एक्टिवेट करता है। पीपल हु डू नॉट हैव सेल्फ लव या फिर उनकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा आ जाता है टिकता नहीं है, या खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो मैं उनको रोज क्वार्ट्ज देती हूँ। या फिर हस्बैंड वाइफ में या माँ बेटी में या इन लॉज में झगड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप कोई भी टाइप का रिलेशनशिप है या फेसिंग स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप, आई जनरली सजेस्ट देम रोज क्वार्ट्ज, या तो आप पहन ले या फिर उसका स्टोन अपने रूम में या अपने ऑफिस में रख लीजिए। वही अट्रैक्ट करेंगे धीरे धीरे लोगों को आपकी वैल्यू, आपके टाइम की और आपकी प्रेजेंस की, रियलाइज होने लग जाएगी।
1: राइट राइट। एंड सिट्रीन आपने बताया, सिट्रीन का पर्पस?
0: सिट्रीन बेसिकली आपके जुपिटर प्लैनेट को एक्टिवेट करता है, गुरु को।
1: ओके, ये ऑरेंज कलर का होता है शायद?
0: इट्स येलोइश, वेरी पेल येलो।
1: ओके ओके,
0: वेरी पेल येलो
1: जी।
0: तो यूजुअली ये जो लोग आफ्टर मैरिज जिनको प्रॉब्लम आती है, पैसा घर में बहुत है लेकिन मेरे लिए नहीं है, बाहर स्पेंड कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मेरे पास ज्ञान बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं इस ज्ञान को कैसे लोगों तक पहुंचा सकूं, मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ लेकिन जहाँ विजडम वाले मुझे डिसीजन लेने, आई एम ऑलवेज मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि गुरु इज फॉर योर एजुकेशन और डिलीवरिंग प्रॉपरली। तो उस केस में मैं ये रिकमेंड करती हूँ, तो आप जो अर्न करते हो वो आपके पास टिकता भी है और आता भी है, आप सडनली बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हो किसी भी नॉलेज के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राणिक हीलिंग कर रहे हो तो आप उसके आगे के स्टेजेस पढ़ने लग जाओगे, एनर्जी वर्ल्ड को बहुत डीपली समझने लग जाओगे। तो हर इंसान का अलग अलग कंसर्न होता है, उस हिसाब से इसे चार्ज किया जाता है।
1: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम, बहुत सारी नॉलेज आज शायद हम साझा कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के साथ। और जैसे कि आपने सुना कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, आपका वीनस वीक है, तो रोज क्वार्ट्ज पहने, ये पिंकिश कलर का स्टोन होता है, और कुशा डिवाइन सेंटर को प्लीज यू नो कॉन्टेक्ट करें और जानें कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है और किस स्टोन की, किस क्रिस्टल की या किस प्रोडक्ट की आपको जरूरत है अपनी वेलनेस की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए। तो आगे चलते हैं मैम, हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, तू फिजा है, फ्रॉम द फिल्म फिजा।

नवीना जी, आजकल बहुत सारे लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। हम जिन ओवरवेलमिंग टाइम्स में रह रहे हैं, जिस तरह का हमारे आसपास फिजिकल जो हमारे एनवायरनमेंट्स में चेंज है, जो हमारी लाइफस्टाइल्स में चेंज है, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, बहुत नॉर्मल है एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और ये सब होना। तो आज जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जो इस वक्त मेंटली

0: हेवी फील कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई एक बेसिक सी एडवाइस देना चाहें कि वो ये कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज अगर ये प्रैक्टिस अपना लें तो शायद कुछ हैवीनेस, थोड़ी सी चीजें बेटर हो सकती हैं और आप उसकी तरफ एक पहला कदम उठा सकते हैं, वो अगर कुछ अगर आप साझा करना चाहें तो इस डायरेक्शन
1: जो
0: में।
1: भी इस वक्त मेंटली या इमोशनली फील कर रहे हैं, मैं बस उन्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, प्लीज अपने आप को वीक मत समझिए। ये भी जिंदगी का एक दौर है और ये भी निकल जाएगा। आजकल हम सब बहुत कुछ इमोशनली स्ट्रेस कैरी करते चलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर, ओवरथिंकिंग, एक्सपेक्टेशन आ जाती है और धीरे धीरे माइंड और एनर्जी दोनों ही ड्रेन हो जाती है। कभी कभी आप वीक नहीं होते, आप सिर्फ इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हो। तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, आप रोज खुद को 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। एक शांति की जगह में 5 मिनट खुद के साथ बैठिए और आंखें बंद करके जीभ को तालू पे लगा के डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। और वाइल एक्सहेलिंग, जब आप सांस छोड़ते हैं, आप विजुअलाइज करिए कि जितना भी स्ट्रेस है, जो भी थॉट आपको परेशान करना है या जो भी हैवीनेस आप फील कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम से रिलीज हो रही है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि सुबह नहाते वक्त या जिस भी वक्त आप नहाते हैं, थोड़ा सा पानी में बाल्टी में नमक डाल सकते हैं या फिर नहाने के बाद पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं एंड जस्ट नॉर्मली पानी से उसे साफ करते हैं। आपने ध्यान होगा, बचपन में मम्मियां हमारी नमक से नजर उतारती थी। तो नमक क्या होता है, एक नेचुरल क्लेंजिंग होती है नमक में, जो हमारे ऑरा में से कोई भी डर्टी एनर्जी होती है, कोई भी नजर होती है, उसे नेचुरली क्लीन कर देता है। और सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो हर वक्त स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है और हर चीज अपने सर पे लेने की भी जरूरत नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ी देर नेचर के साथ, अपने साथ वक्त बिताइए और उस ऊपर वाले पर और उसके प्रोसेस पे भरोसा रखिए। कभी कभी लाइफ के टफेस्ट फेज हमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं और
0: बिल्कुल
1: जब हम वो लेसन सीख जाते हैं, वो प्रॉब्लम याद भी नहीं होता है भी या नहीं। और जब तक हम नहीं सीखते हैं, सेम प्रॉब्लम लेकिन डिफरेंट पर्सन रिपीट चली जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेसन।
0: राइट राइट बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लेसन्स लर्न करें। और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करी कि हर बार वो बर्डन कैरी करना जरूरी नहीं है, कई बार आप वो बर्डन उतार भी सकते हैं, उसको थोड़ी देर साइड में रख भी सकते हैं और किसी और के साथ उस बर्डन को शेयर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो बोझा लेके अपने जीवन भर घूमते रहें, अपने आप को थोड़ा एक स्पेस दीजिए, कट योर सेल्फ सम स्लैक एंड लाइफ अपने आप आसान लगने लगेगी। और जो रिचुअल्स मैम ने अभी हमारे साथ साझा किए, आई होप हमारे श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं वो इन रिचुअल्स को अपना सकें, क्योंकि ये बहुत बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं अपने चक्रास को, अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को क्लीन रखने के लिए। सो आई होप ये आपको हेल्प करते हैं जैसे कि मुझे हेल्प करेंगे। आई विल सर्टनली डू इट। आगे चलते हैं मैम हमारे आखिरी सेगमेंट पर। आपके लिए ये जो पूरी जर्नी थी, आपकी जो पूरी हीलिंग जर्नी थी, आपका ये जो दिस होल पाथ जो आपने तय किया अपने जीवन में, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें एक लाइन में या एक फलसफे में तो वो क्या है, और आपके आपके जीवन की, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही, अगर आप कुछ बताना चाहें।
1: मैंने अपने स्ट्रगल्स को हमेशा डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा है और उन्हें स्ट्रेंथ में बदला है और अपनी हीलिंग को सेवा बना ली है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल, रुकावटें या जो टेस्ट आते हैं, वो हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ बड़ा या बेहतर दिखाने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। मेरे लिए स्ट्रगल्स ने, मेरे को स्ट्रगल्स ने बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाया, लेकिन प्राणिक हीलिंग ने और उसकी टीचिंग्स ने मुझे एक डायरेक्शन और एक पर्पस दिया। पहले मुझे लगता था हीलिंग सिर्फ मेरे इमोशन, इनर बैलेंस और कॉन्फिडेंस के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हीलिंग सिर्फ पर्सन तक नहीं रिलेटेड लिमिटेड रहती है, वो आगे तक जाती है. जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत घना पेड़ होता है, आप अगर उसके पास जाएंगे उसका काम ही है छाया देना. आप चाहे उससे कुछ एक्सपेक्ट करें या नहीं करें, वो आपको छाया ही देगा, क्योंकि उसके ऑरा में से यही निकलता है. तो जब एक पर्सन एनर्जी लेवल पर हील होता है, कोई चाहे या ना चाहे उसकी फैमिली की एनर्जी चेंज होती ही है. उसके घर का ऑरा, उसके रिलेशनशिप, उसके फाइनेंसेस, घर का माहौल, सब कुछ धीरे धीरे बेटर के लिए शिफ्ट होता है. तो हीलिंग एक पर्सनल जर्नी से शुरू जरूर होती है, लेकिन वो सिर्फ पर्सनल नहीं रहती, वो धीरे धीरे दूसरों तक पहुंचती है. और मेरे लिए हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आप खुद को हील करें और अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ में रोशनी डालें, क्योंकि जो आप दोगे वो 100 गुना आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. शेयर योर लाइट एज फार एंड एज वाइड यू कैन. मैम, आप कंक्लूड करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई आपकी डी स्ट्रेसिंग हॉबीज हैं क्या? आप गाते हैं? क्योंकि हम लोग बेसिकली, हमारा शो, हमारा प्लेटफॉर्म SN रेडियो गानों और गीतों पे बहुत फोकस्ड है, तो अगर आप गीत गुनगुना सकते हैं, अगर आप गाते हैं, तो हमारे लिए अगर एक छोटा सा गीत गुनगुना दें या कोई फलसफा शेयर कर लें या कुछ लिखावट आपकी जो आपने कभी लिखा हो वो शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ, जस्ट एज एन एंडिंग.
1: जी बिल्कुल, मैं गाती हूँ
0: जी.
1: मैं पिया तो से आपके साथ शेयर करना.
0: ओह वाओ वाओ,
1: कैसी भी आवाज निकले.
0: नहीं नहीं, आई एम श्योर यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस. यस
1: ओके, शैल आई स्टार्ट?
0: जी.
1: पिया तो से मैं. ओके, शैल आई स्टार्ट?
0: जी.

0: मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन पिया तो लेना ना धीरे।
1: बहुत बहुत खूबसूरत मैम, आई एम श्योर आपको लर्न करना चाहिए। आई थिंक इफ यू आर नॉट ऑलरेडी अ लर्न सिंगर, यू शुड गो अहेड एंड लर्न सिंगिंग, बिकॉज यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस। और ये इतना डिफिकल्ट गाना है, तो बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया है। ऑलरेडी आई थिंक आई गॉट सम गूज बम्स। तो
2: थैंक यू सो मच,
1: ब्यूटिफुल सिंगिंग, एंड आई थिंक आपको परस्यू करनी चाहिए सिंगिंग, और फिर आना चाहिए एसएन रेडियो पर अपना एक शो के साथ आज के कलाकार में। तो थैंक यू सो मच लवीना जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी प्यारी, इतनी सहज और इतनी सटीक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे श्रोताओं को आज बहुत फायदे हुए होंगे इस एपिसोड से, इस कॉन्वर्जेशन से, एंड आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आज के जमाने में आई थिंक आज से ज्यादा इसकी कभी पहले जरूरत नहीं थी, जो जिस जनरेशन में हम अब हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी एसएन फैमिली की तरफ से। तो दोस्तों, हमने जाना कि हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द को खत्म करना नहीं होता, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है खुद को दोबारा पहचानना। और आज लवीना जी ने हमें यही याद दिलाया कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी जरूर होती है, बस कभी कभी उसे जगाने के लिए थोड़ी सी फेथ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत होती है। चलिए अगले एपिसोड तक हम खुद के अंदर की हीलिंग को ढूंढते हैं, टैप करते हैं और उससे उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप सुन रहे थे अपनी आरजे, अपने तरानों की हमसफर तनुषा को, ओनली ऑन

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग SN रेडियो पर।
1: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाए।

भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त न रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: ही बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती।

0: पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती और आप सुन रहे हैं SN रेडियोस और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर मेरा और आपका मनपसंद प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, शायरी सिर्फ कागजों पर उतरे हुए लफ्ज नहीं होते, बल्कि वो जज्बात हैं जो हम अक्सर कह नहीं पाते। कभी जिंदगी सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है तो कभी खामोशी हमारी हमसफर बन जाती है। आज की शाम इन सवालों और खामोश एहसासों के नाम करते हैं। तो चलिए दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थम कर चलने को कहते हैं और शुरू करते हैं आज का ये हसीन सिलसिला। आज के प्रोग्राम की खसूसी बात यह है कि आज के प्रोग्राम में हम एक बिल्कुल ही नई किस्म की गुलुकारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें सूफिया कलाम भी है, तो आप कह सकते हैं ये फ्यूजन गजल्स हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं, शेर हाजिर है। कभी उदास आंखों में रहता है वो चेहरा रात दिन, उस चेहरे पे नूर हो ये जरूरी तो नहीं। सफर में साथ चलते हैं यहाँ कितने ही लोग, हर एक हम सफर ही हो ये जरूरी तो नहीं। या फिर फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, हर एक रंग में तू ही हो जरूरी तो नहीं। कभी खामोशियां भी तो बहुत कुछ कहती हैं, हर एक बात लफ्जों में हो जरूरी तो नहीं। तो आइए दोस्तों ये खूबसूरत सी गजल सुनते हैं जिसका मिसरा है, हर एक ख्वाब मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं, मोहब्बत में सभी खुश हो जरूरी तो नहीं। मुलाहिजा फरमाएं,

उनकी यादों के मौसम बेहिसाब आते हैं और उनका सितम ढा के फिर खुद ही रूठ जाना। आफते जान है वो उनका मुस्कुराना। लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुनिए और बह जाइए प्यार के डूबे हुए एहसास में।

0: दोस्तों, ये रूठना मनाना तो बस इश्क की अदा है, दोनों की ही इसमें जीत है, ऐसी ये सजा है। आपने कभी उस प्यार करने वाले आशिक की लड़ाई सुनी, जहां उसका उलाहना और शिकायतें सिर्फ इसलिए हैं कि उसको और भी प्यार किया जाए। प्यार और ज्यादा प्यार पाने की जद्दोजहद में वो अपने महबूब से हक से शिकायत करता है, जिद करता है और कहता है, पास अपने बिठा लीजिए, हाथ मेरा थाम लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, अब रूह में समा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। लफ्ज़े शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, लफ्ज़े शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, पर आपकी नजरों में तो पैमाने भरे हैं, तो फिर नजरों से पिला दीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। तरके वफा की बातें फक्त कहने की बातें, तरके वफा की बातें फक्त कहने की बातें, बिना आपके कटती नहीं ये तन्हा रातें। गजल सुनिए, आंखों से मना लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, होठों से चुरा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। शक पर मैं
1: लफ्जों का आईना।

तू चला गया तो ये सांसें चलेंगी कैसे? तू चला गया तो ये सांसें चलेंगी कैसे? दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा कैसे? जिंदगी भर तेरी चाहत में तड़पूंगा कैसे? तू बता दे कि मैं अब जी पाऊंगा कैसे? अगर तूने मुझे अब यूं ही रुलाया तो मिट जाऊंगा तेरे बिन, मेरी जान मैं बिखर जाऊंगा। उम्र भर इन तन्हा रातों को बिताऊंगा कैसे? प्यार इतना तो बता दे मैं जी पाऊंगा कैसे? तू चला गया तो ये सांसें चलेगी कैसे? दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा कैसे? दोस्तों, ये सूफियाना कलाम सुनिए। दिन रात तड़पता हूँ, दिन रात जलता हूँ, तू दूर हुई जब से दिल टूट गया तब से, तू दूर हुई जब से रुख बदल गया तब से। सुनिए ये सूफियाना कलाम।

इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना डाला, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना डाला। दो फूलों का बोझ ना सह सकती थी मुमताज, और शाहजहां ने उस पर ताजमहल बना डाला। आईने में खुद की ही सूरत को देख के वो अपने से ही शर्माने लगे, सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं, इशारों इशारों में बताने लगे हैं। दोस्तों, ये बहुत सुंदर कलाम है, आप भी इसका लुत्फ उठाएं। सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं, इशारों इशारों में बताने लगे हैं।

दोस्तों दर्द दिल की दास्तान है कि महबूब की बाहों में एक बार जाकर जो सुख का एहसास सीने में और नस नस में बस जाता है वो फिर उम्र भर वहीं कहीं ठहर जाता। वसल की खूबसूरती ही ये है कि वो चाहे पल भर का ही क्यों ना हो, सारी उम्र बिताने के लिए काफी होता है वो पल भर का साथ, सुलग सुलग के भी कहीं बहुत सुकून देता है। महबूब कहता है कि सिमट आई है दुनिया इस आगोश में, सिमट आई है दुनिया इस आगोश में, रहे ना अब हम अपने ही होश में। दोस्तों ये खूबसूरत सी गजल सुनिए जिसका उन्वान है ठहर गया वक्त तुम्हारी बाहों में, ठहर गया वक्त तुम्हारी बाहों में, खो गए हम दोनों एक दूजे की निगाहों में।

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता है।

0: है। किसान साथियों, हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खेती बाड़ी कार्यक्रम से लाभ उठा रहे होंगे। किसान साथियों, जैसा कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से लेते हैं और आज पुनः हम रुख करने वाले हैं कृषि से जुड़े हुए कुछ और बिंदुओं पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं माइक्रो इरिगेशन के ऊपर। अगर हम इसे कहें तो सूक्ष्म सिंचाई, तो कैसे होती है यह सूक्ष्म सिंचाई और साथ ही जानेंगे इसकी तकनीकों के बारे में, कहां से और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसके क्या फायदे क्या नुकसान है और ये किस तरीके से किसान भाइयों को कैसे ये मदद कर सकती है और कैसे ये कारगर साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं।
2: जी देखिए, देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस साल बड़ी अच्छी बरसात हुई है और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अधिकतर किसान भाई अपने धान की रोपाई या बुआई पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हाँ कुछ किसान बचे हैं, उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी रोपाई का कार्य जो है पूरा कर लें। साथ ही जो आपकी धान की फसल चल रही है उसमें अगर किसी वजह से पानी की कमी हो तो उसको भी आप पूरा करें, साथ ही साथ उसमें सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन भी आपको करना है और इसी प्रकार खरपतवार वगैरह भी धान में आते हैं उनकी रोकथाम करनी है और कई बार कीड़े मकोड़े बीमारी ये भी आ जाते हैं, तो इनसे भी आपको अपनी फसल की शुरू से ही सुरक्षा करके चलना है जिससे कि आपका ब्यांत अच्छा हो, पौधों की संख्या अच्छी आए, तो आखिर में आपको जो धान की फसल की पैदावार है वो अच्छी मिलेगी।
3: बिल्कुल, देखिए अच्छी पैदावार आपको मिल सके इसलिए आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। और भी कुछ खास बातें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।

0: धान की उत्पादन प्रणाली में भारी परिवर्तन आने से तथा श्रम और जल की बढ़ती हुई अनुपलब्धता के कारण धान की खेती में खरपतवार से जुड़ी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। धान के पौधे के आविर्भाव के 35 से 40 दिनों के भीतर पौधों और खरपतवार के बीच प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान खरपतवार के नियंत्रण के लिए शाकनाशियों या उनके मिश्रण का प्रयोग काफी अच्छा है। मिट्टी परीक्षण के बाद ही उर्वरक की सही मात्रा का प्रयोग करें। जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए नए रास्ते तय करेगा। अजोला धान की फसल में एक उपयोगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है। अजोला के प्रयोग से धान की उपज में प्रति हेक्टेयर 1 से 2 टन की वृद्धि होती है। धान आधारित कृषि प्रणाली में किसान धान की फसल के साथ अधिक आय कमा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: तो देखा आपने किस तरीके से आप जो धान की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बारे में आगे भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर खन्ना आपके पास में आना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं हमारी जो सिंचाई की पद्धतियां हैं उनकी, और खासतौर से सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां जो हैं, कितनी कारगर और कितना महत्वपूर्ण कि हमारे जो किसान भाई हैं इनको इस्तेमाल में लाएं।
1: ये आपका बड़ा उचित प्रश्न है। अभी इस समय हमारे यहाँ बारिश हो रही है, पूरे देश में करीब करीब सामान्य से करीब करीब सामान्य के तर बारिश हो रही है
0: जी।
1: अभी जहाँ पे वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें पानी का उपयोग बड़े तरीके से करना होगा, जो कि हम पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें, खासकर उन किसानों के लिए जो सब्जी की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, उनमें पानी का इस्तेमाल बड़े उचित तरीके से करें
0: जी,
1: जिससे कि ये पानी से अधिक उस उत्पादन ले सकें, अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ा सकें। और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जिसमें बहुत सारी पद्धतियां आती हैं, टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई या स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे कहते हैं, आजकल रेन गन भी उपलब्ध होने लगा है बाजार में, ये सारी पद्धतियां सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत आती हैं। और इन पद्धतियों को इस्तेमाल करके आप कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल ले सकते हैं
0: जी,
1: और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए जो पानी है क्योंकि उसकी बचत करना बेहद जरूरी, लेकिन जो इलाकों में कम पानी है तो वहाँ आप इन पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ पानी की बचत आप करेंगे बल्कि आपकी जो लागत है उसमें भी काफी हद तक हम मान सकते हैं कि कटौती हो सकती है। आगे भी इनके जो फायदे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज भारत में फसलों की सिंचाई, उद्योग और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल और जमीन भारी दबाव में है। सन 1955 में जहां प्रति व्यक्ति 5000 घन मीटर पानी की वार्षिक उपलब्धता थी, वहीं सन 2000 तक आते आते ये 2000 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गई। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें सिंचाई की वैकल्पिक तकनीक तलाश करनी होगी जिसमें पानी का न्यायपूर्वक समुचित उपयोग हो। परंपरागत सिंचाई द्वारा जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकतर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए जमीन में रिसकर या वाष्पीकरण द्वारा व्यर्थ चला जाता है। टपक सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनेक स्तरों पर अनुदान भी दे रही हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके पानी की बचत कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। आज देश में जहां भी किसान ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें वहां कामयाबी मिल रही है। इस तकनीक को मृदा के प्रकार, खेतों के ढाल, जल के स्रोत और किसान की क्षमता के अनुसार अधिकांश फसलों के लिए अपनाया जा सकता है।
0: तो देखा आपने कितना फायदा जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं इनमें छिपा हुआ है, और इसके जरिए जैसा हमने आपको बताया लागत जो है काफी कम हो जाती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी आपको वृद्धि मिलती है। लेकिन बात आज हम यहाँ कर रहे हैं धान को लेकर भी। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि रोपाई के लिए अगर हम वैज्ञानिक सलाह माने तो फिलहाल लगभग समय जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे देश में इस बार की बारिश की अगर बात की जाए तो कुछ हिस्सों में बारिश में थोड़ी सी देरी हुई, कुछ इलाकों में बारिश अभी भी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और भी इसके अलावा कुछ और इलाके हैं, क्या वहाँ किसानों के लिए अभी संभावनाएं हैं अगर वो रोपाई करना चाहते हैं तो कुछ समय है उनके पास?
4: देखिए, जो किसान इच्छुक हैं और बरसात जैसे लेट हुई है या किसी और कारण से आप जो है धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं तो कोशिश करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस रोपाई को आप संपन्न कर लें। और इसमें खास बात का ध्यान ये रखना है आपको कि जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनको आप ना लें, जो कम अवधि में पक्के तैयार हों उस तरह की किस्में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा
0: जी। तो देखिए, जो जल्दी से पककर तैयार हो सकती हैं उन किस्मों का आप चयन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा कि हमने बताया कि देरी जो है कभी कभी हो जाती है, लेकिन ऐसे में भी क्या डॉक्टर दिनेश कुछ और ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमारे किसान भाइयों को रखना होगा?
4: बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जब आप रोपाई कर रहे हैं तो नर्सरी की उम्र, जो पौध आप लगा रहे हैं उसकी उम्र आमतौर पर वैसे 20 से 25 25 दिन होनी चाहिए, लेकिन कई बार ये 35 दिन 40 दिन की पुरानी पौध हो जाती है
0: जी।
4: और किसान के पास मान लीजिए कोई रास्ता भी नहीं है, दूसरी नर्सरी वो एकदम तैयार नहीं कर सकते, तो उस दशा में उन्हें मजबूरन वो पुरानी पौध लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमें हमेशा ही कम पैदावार मिलेगी, अगर हम उसमें 3-4 बातों का खास ध्यान रखेंगे तो हम उनसे भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे एक स्थान पे आपको 4-5 पौधे लगाने हैं, अब जब पिछाई पछेती जब हम पौध लगा रहे हैं तो 4-5 पौध एक जगह पे लगाएं, और जो दूरी है रोपाई की उसको घटाकर आप जैसे आमतौर पे 20-25 सेंटीमीटर दूरी पे जो है किसान भाई लगाते हैं, तो उसको घटा के 15 सेंटीमीटर दूरी पे पौध लगाएं। साथ ही साथ जो पौध है हमारी उसकी जो चोटी है ऊपर से चोटी तोड़ दें या काट दें, और साइड में जो पत्तियां होती है उनको भी काट दें। ऐसा करने से उससे पानी कम उड़ता है पौधों से और पौधों की स्थापना खेत में जो है वो जल्दी हो जाती है
0: जी।
4: साथ ही साथ एक और विशेष ध्यान रखना कि उर्वरकों की मात्रा वो आपको बढ़ानी है, वो आपको करीब 1.25 गुनी मात्रा करनी है संस्तुति से ज्यादा, यानी खेत है आपका और उसमें पौध हमारी डूब जाएगी तो ऐसी स्थिति में तो धान लगाना मुश्किल होता है और वो चलेगा भी नहीं आपका। कोशिश ये करें कि आप किसी तरह से आप उसका पानी निकालें, जल निकास करें, और जब पानी उसमें 10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाए तब आप उसमें रोपाई कर सकते हैं, ऐसा संभव है। हाँ, पानी निकालने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत गहरे की जमीन है और आसानी से जल निकास नहीं होता, तो उस दशा में आप कोई पंपिंग सेट हो या कोई आपका इंजन हो पंखा हो उसको लगा के आप पानी बाहर निकाल सकते हैं
0: जी।
4: यही एक तरीका है,
0: यानी पानी निकालने का इंतजाम पहले आपको करना होगा, उसके बाद ही आप रोपाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी ज्यादा समय नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो जो आपके जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है वहां वैज्ञानिक जो है उनसे भी सलाह ले सकते हैं। जो समय है, क्योंकि अब लगभग एक उचित समय जो माना जाता है वो निकल चुका है, लेकिन जैसा आपने बताया जो पानी की समस्या है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजाम और पहले करना चाहिए। फिलहाल यहाँ अगर डॉक्टर खन्ना पानी की भी अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारी ये पद्धतियाँ हैं, जैसे अगर हम पहले बात करते हैं जो हमारी टपक सिंचाई पद्धति है, कुछ किसान ऐसे हैं जो उसके जरिए फायदा भी ले रहे हैं, लेकिन किसानों में अभी जागरूकता की कितनी आपको लगता है कि और ज्यादा जरूरत है इनके जरिए, ना सिर्फ उनकी लागत बच सकती है, समय बच सकता है, बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी मिल सकती है।
1: काफी क्षेत्रों में हमारे देश के टपक सिंचाई पद्धति काफी प्रचलित है और हमारे किसान भाई फलों की खेती, सब्जी की खेती टपक सिंचाई पद्धति इस्तेमाल करके कर रहे हैं
0: जी।
1: कुछ राज्यों में इस पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी कम है किसान भाइयों को, और उसमें बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं
0: जी।
1: इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना यह है कि अगर टपक सिंचाई पद्धति इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो कम पानी में भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पद्धति को और कम पानी की उपलब्धता है उनके यहाँ, तब भी वो सब्जी की खेती कर सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से ये देखा गया है कि इसमें पानी की जो बर्बादी है वो बिल्कुल ही कम होती है और जो इसकी दक्षता कहलाती है 80-90% तक जाती है
0: जी।
1: जिसके कारण आपको बर्बादी वाला पानी या जो आपकी जड़ से नीचे जाने वाला पानी केवल 20% ही रह जाता है और सारा का सारा पानी आपके खेती के लिए इस्तेमाल होता है या पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। और अच्छी से अच्छी जब पौधे को संपूर्ण पानी मिलेगा उसके साथ हम खाद भी लगा सकते हैं तो संपूर्ण खाद मिलेगी तो अधिक उत्पादन आएगा और अधिक आमदनी बढ़ेगी किसान।
0: बिल्कुल, तो देखिए कितना फायदा इससे आपको हो सकता है।
5: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: मैंने बताई थी पौध की संख्या आपको बढ़ानी है, आपको एक जगह पे 4-5 पौधे लगाने हैं और उनको पास पास लगाना। पहले आप दूर दूर लगाते थे 25-20 सेंटीमीटर पे, अब उनको 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है पंक्तियों में, और उर्वरकों की मात्रा आपको बढ़ा देनी है
0: जी,
4: 1.25 गुना उर्वरकों की।
0: बिल्कुल, लेकिन इसका अनुपात आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो किसान जो समय से जिन्होंने रोपाई भी की है, क्या वहां भी अब इस समय आवश्यकता है उर्वरकों की?
4: बिल्कुल, अगर किसान भाइयों ने जैसे धान की रोपाई कर दी है और उर्वरक शुरू में तो किसानों को हम बताते हैं, देते हैं किसान भाई, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक, ये 4 प्रमुख उर्वरक हैं जो रोपाई या बुआई के समय पे किसान भाइयों को संस्तुत किए जाते हैं। नाइट्रोजन आपको 3 बार में लगानी है, जैसे कि रोपाई के आप आठ दस दिन बाद एक तिहाई मात्रा नाइट्रोजन की लगाएं। फिर जब आपकी फसल में कल्ले बन रहे हों, जो कि आमतौर पर रोपाई के 40 से 45 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं, उस समय पे आपको एक उर्वरक की जो एक तिहाई मात्रा है नाइट्रोजन की वो डालनी है, और बाकी 55 से 60 दिन बाद रोपाई के
0: जी।
4: तो तीन भागों में नाइट्रोजन को आपको प्रयोग में लाना है। साथ ही साथ आजकल कुछ नई नई तकनीकी आ गई हैं, जैसे कुछ किसान भाइयों ने, खास करके जैसे पंजाब हरियाणा, वहां पे उन्होंने लीफ कलर चार्ट का भी प्रयोग शुरू कर दिया है। उसके आधार पे अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की बचत होती है और अच्छी पैदावार मिलती है।
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ भी अगर आप चाहें तो आप बचत कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर दिनेश हम देखते हैं, जैसा हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, जो खरपतवार की समस्या है वो भी किसानों के सामने होती है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए किसानों को?
4: बिल्कुल, रोपाई जैसे किसान भाइयों ने कर ली और

0: के बाद आप ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई या प्रेटिलाक्लोर दवाई आती है, इनका प्रयोग कर सकते हैं
1: बिल्कुल,
0: और खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं।
2: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: मैं आपका नीचे देखा आपने, तने का हिस्सा तो गल तो नहीं रहा, वो गलन तो नहीं हो रहा उसमें?
4: हाँ,
0: काला रंग, काला रंग हो रहा है। देखिए ये तना गलन रोग हो सकता है और इसमें तने का नीचे का हिस्सा काला हो जाता है
1: जी।
0: काला हो जाता है और पत्ते भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। ये क्या होता है? कवक होता है, कवक की वजह से ऐसा होता है। और ये उस दशा में ज्यादा होता है जब धान में लगातार पानी भरा रहता है
1: जी।
0: तो दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है, आपको नाइट्रोजन की मात्रा खास करके ज्यादा नहीं डालनी है, संतुलित अनुपात में डालनी है। दूसरा, खेत से तुरंत आप पानी निकाल दें, उससे
1: जी
0: थोड़ा हवा लगेगी उसको, और उस समय पे आप इसमें बावेस्टीन नाम की दवाई आती है, बावेस्टीन का 0.1% का घोल बना लें, यानी 1 ग्राम दवाई और 1 लीटर पानी,
1: बिल्कुल
0: करीब 1 हेक्टर में 400 लीटर पानी बहुत होगा, उसको आप छिड़काव कर दें, और खास करके तने की तरफ करके आप छिड़काव करें, और इस छिड़काव को 10 दिन बाद और करें
1: जी।
0: लेकिन छिड़काव करते समय आपको ध्यान रखना खेत में पानी नहीं होना चाहिए, तो ये रोग आपका नियंत्रित हो जाएगा।
1: बिल्कुल, इस बात का देखिए आप पूरी तरीके से ख्याल रखें, जो खेत है वहां पर पानी ना हो, और उसके बाद ही इस रोग का नियंत्रण आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं यहाँ डॉक्टर खन्ना आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि पानी की अगर बात की जाए, हम तो प्रति बूंद अधिक उपज की भी बात करते हैं किस तरीके से, लेकिन जो किसान है इस बात, ये जो शब्द है इनकी सार्थकता को पूरा कर सकते हैं, प्रति बूंद अगर अधिक उपज लेनी है तो कैसे, उनको क्या, कौन सी ऐसी पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं?
5: आपने बड़ा उचित समय पे ये विषय उठाया कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस विषय पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हर खेत को पानी मिले और प्रति बूंद अधिक उत्पादकता मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि प्रति बूंद जो भी पानी आप दे रहे हैं अधिक से अधिक उत्पादन मिले। उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप जो सिंचाई पद्धति अगर इस्तेमाल करते हैं या सतही पद्धति इस्तेमाल करते हैं तो पानी की बहुत बर्बादी होती है, आपकी दक्षता केवल 35-40% ही रह जाती है, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारा जड़ों से नीचे चला जाता है या उड़ जाता है, जैसा हमने रिपोर्ट में भी देखा था। उसके बजाय हम अगर टपक सिंचाई, अगर आप फलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, उसमें टपक सिंचाई पद्धति इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप और अधिक फसलें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फव्वारा सिंचाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बड़ा फव्वारा भी आता है जिसे हम रेन गन पद्धति कहते हैं, और वो और कुछ नहीं है, बड़ा फव्वारा है, एक जो साधारण छोटे फव्वारे से बड़ा फव्वारा है, और वो ज्यादा क्षेत्र कवर करता है प्रति फव्वारा, और उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
5: इसमें मैं यहाँ ध्यान देना लाना चाहूंगा किसान भाइयों का कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार और आपकी राज्य सरकार भी इन पद्धतियों को इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने के लिए राजकीय सहायता भी देती है, और यह सहायता आपके केंद्र सरकार कुछ देती है और राज्य सरकार देती है
1: जी।
5: मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने जिले के कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी जहां पर ये स्कीम चल रही है उससे संपर्क करें, और अपने क्षेत्र में जहां जहां उनको लगाना है, चाहे सब वो सब्जी की खेती कर रहे हों या फलों की खेती कर रहे हों, उसमें इस पद्धति को इस्तेमाल करें
1: जी। बिल्कुल, देखिए आपके पास जो विकल्प हैं वो लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर दिनेश, धान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो पानी जो है माना जाता है कि जितना खड़ा रहेगा उतना अच्छा, एक निश्चित अनुपात जो है वो माना जाता है, क्या आने वाले समय में ये भी संभव हो सकेगा कि वहाँ भी जो पानी है कम से कम मात्रा में उसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकें?
0: बिल्कुल, अब आगे चल के पानी की तो कमी आनी है, तो उस दशा में जैसे 2-3 तरीके हैं, खास करके जैसे सीधी बिजाई है
1: जी।
0: सीधी बिजाई में डॉक्टर मनोज खन्ना ने अपने परीक्षण किए अनुभव किया है कि धान में भी ये सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है सूक्ष्म सिंचाई विधि, उसमें कुछ आपको खास सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इस तरफ भी काफी अनुसंधान हो रहे हैं और सीधी बिजाई एक रास्ता हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये भी काफी महत्वपूर्ण विषय हम

0: मान सकते हैं।
1: किसान साथियों, धान की फसल में अधिकतर हम देखते हैं कि मोथा नामक जो खरपतवार है वो काफी मात्रा में होता है और इसे थोड़ा सा इस पर हमें काबू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए किसान साथियों जानते हैं कैसे हम इस खरपतवार से निजात पा सकते हैं, साथ ही हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हमें इसके निदान हेतु क्या करना चाहिए। आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: खेत बराबर है
4: और हर साल मोथा आता है आपके खेत
3: जी, आ जाता है
4: जी। जी जी, देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि फसल चक्र को अपनाना है। कई बार मोथे के क्या होते हैं, ट्यूबर होते हैं इसके छोटे छोटे, वो मिट्टी के अंदर काफी गहराई में होते हैं और वो मरते नहीं है, जाते नहीं है
5: जी।
4: इसका एक तरीका ये है कि अगर आप फसल चक्र अपनाएंगे, कोई दलहनी फसल अगले साल आप लें या कोई अन्य फसल लें तो मोथे का प्रभाव कम होगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी फसलों के लिए भी फसल चक्र का अपनाना बहुत जरूरी है
5: जी।
4: और दूसरा, इस समय जैसे मोथा आपके आ रहा है तो आप 25 दिन की जब आपकी रोपाई हो जाए, 25 से 30 दिन की, तो उस समय पे आप बिसपायरीबैक सोडियम नाम की एक दवाई आती है
5: जी,
4: उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 25 ग्राम मात्रा आप लें 500 से 600 लीटर पानी में और प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़काव कर दें
5: जी।
4: छिड़काव आपको रोपाई के 25 से 30 दिन बाद इसका करना है, तो सभी प्रकार के लगभग खरपतवार इससे मर जाते हैं
5: जी। बिल्कुल, ये तो बात हुई खरपतवार की भी, लेकिन अगर हम पोषण प्रबंधन की बात करते हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं कैसे उनकी पूर्ति की जाए और उसके लिए सही समय क्या रहता है, क्योंकि अलग अलग समय पर उनकी आवश्यकता रहती है फसल को
4: जी। जी देखिए, जैसे रोपाई कर रहे हैं किसान भाई या जिन्होंने सीधी बिजाई की है, तो जो फास्फोरस पोटाश जिंक ये उर्वरक हैं, इनकी सारी मात्रा आपको रोपाई के समय या बुआई के समय देनी चाहिए
5: जी।
4: कहीं कहीं पर गंधक की भी कमी आजकल महसूस हो रही है मिट्टियों में, तो आप गंधक का प्रयोग भी 20 किलोग्राम 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रोपाई के समय पे कर सकते हैं
5: जी।
4: साथ ही जहां तक नाइट्रोजन की बात है, तो इसकी संस्तुति यह है कि इसको 3 बार में हमें डालना चाहिए, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई। पहली आपकी रोपाई के 1 सप्ताह बाद देना है आपको नाइट्रोजन को, दूसरी आपको रोपाई के 25-30 दिन बाद देना है और तीसरी आपको 55-60 दिन पे इसको देना है
5: जी।
4: इस तरह से अगर आप नाइट्रोजन का प्रबंधन करेंगे तो आपको अच्छा ब्यांत मिलेगा, अच्छी फसल की बढ़वार होगी। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि लीफ कलर चार्ट का प्रयोग भी किसान भाई आजकल अपना रहे हैं और इसका प्रयोग करके भी हम नाइट्रोजन को सही समय पर डाल सकते हैं
5: जी।
4: एक पैमाना होता है जिसपे 5 अलग अलग हरे रंग बने होते हैं, शुरू में पीला होता है, फिर हल्का हरा हो जाता है, फिर और हरा, फिर गाढ़ा हरा, ऐसे करके 5 रंग की पट्टियां होती हैं। उसके आधार पे पत्तियों से उसकी मैच करते हैं। अगर 3 नंबर की पत्तियों के रंग मिल रहा है हमारा 3 नंबर की पट्टी से, तो उस समय हम 20-25 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग कर
5: सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से आप पहचान भी कर सकते हैं कि आवश्यकता कब है जो आपकी फसल है उसको, और ये एक ऐसी तकनीक है जिसको काफी सरल हम मान सकते हैं, जिसके जरिए हमारे जो किसान भाई हैं खुद से भी वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ डॉक्टर खन्ना आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने जिक्र किया कि जो हमारी धान की फसल है क्या कितनी कारगर है वहाँ पे जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं।
6: हाँ, हम लोग अपने अनुसंधान फार्म पर पिछले 4 से 5 साल से हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति भी धान में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम केवल न केवल पानी बचा पा रहे हैं 35 से 40%, और इससे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है खासकर धान के क्षेत्रों से जो वो भी हम कम कर पा रहे हैं
5: जी।
6: और इसमें एक मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा कि यानी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में एक एडवांटेज या वो है कि इसमें आप खाद भी पद्धति के साथ ही लगा सकते हैं, उससे आपकी खाद की कोई बर्बादी नहीं होती है, खाद सीधी पौधे के पास पहुंचती है और खासकर धान के उसमें हम इस पद्धति को सीधी बिजाई के रूप में भी अगर कोई धान लगाता है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई SRI विधि से भी, सीरी विधि जिसे बड़ी प्रचलित है, उसमें भी लगाता है, उसमें भी हम टपक सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई का इस्तेमाल धान में भी कर सकते हैं और आपका उत्पादन इतना नहीं घटता है और करीब करीब उतना ही उत्पादन आपको मिलता है जितना आप अधिक पानी या पानी भर के आप सिंचाई करते हैं
5: जी,
6: तब मिलता है।
5: यानी पानी के साथ देखिए जो खाद है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन पद्धतियों में, फर्टिगेशन जिसे नाम भी दिया गया है हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने, और तमाम तकनीक है जो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: इसमें पूरी पूरी संभावना है कि तना छेदक आ गया होगा, ब्यांत हो गया उसमें आपके?
3: सर तना छेदक जैसे अगर आ गया तो उसमें कोई कीड़ा वगैरह मिलता है?
4: तने छेदक का कीड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, शुरू में वो नन्ना की गिंडार होती है उसकी, और वो नीचे नीचे से घुस जाती है, तने के नीचे के हिस्से से वो अंदर घुस जाती है और अंदर अंदर खा जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे चार पांच पौधे एक साथ हैं, तो जो बीच के पौधे हैं उनकी चार पांच पत्तियां पहले सूखती हैं ऊपर से, और फिर सारा पौधा सूख जाता है, उसे खींचते हैं तो एकदम बाहर खींच जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है।
3: मैंने तने को मतलब पूरा काट के निकाल के छील के देखा था।
4: ऐसा कई बार कीड़ा क्या होता है कि खा के बाहर निकल जाता है, और फिर आप सोचेंगे कीड़ा तो इसमें मिला ही नहीं हमको
5: जी। लेकिन इसके लिए क्या करना सही
4: रहेगा? इसके लिए हमें पूरी संभावना लग रही है कि इसमें आपका तना छेदक है, इसको डेड हर्ट्स कहते हैं अंग्रेजी में, जो बीच का भाग है उसका, हिल्स का, जहाँ पौधे कई सारे इकट्ठे होते हैं धान के, वो सूख जाता है। तो इसके लिए आपको इस समय कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड ये दवाई डालनी है। इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर या 10 किलोग्राम प्रति एकड़, ये 4% में आती है, 4% ग्रेनुल्स दानेदार दवाई है
5: जी।
4: इसका प्रयोग करें आप।
5: बिल्कुल, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो स्थिति आपने बताई है, उम्मीद करते हैं कि इसके अलग यानी जो परिणाम है, सही तरीके से सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे इनको
4: जी। इस दवाई को डालते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि बराबर वितरण हो, इसको आप मिट्टी या रेत में मिला लें और तब डालें, और खेत में नमी भी होनी चाहिए, तब इसका प्रभाव अच्छा होगा।
5: बिल्कुल, देखिए जो इसका असर है कब किस स्थिति में ज्यादा हो सकता है, इस पर भी लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर खन्ना, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे फर्टिगेशन का तो उदाहरण आपने दिया है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी दूसरी पद्धतियां स्प्रिंकलर की अगर हम बात करते हैं, तो कितना इसके परिणाम हमारे सामने आए, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो फसल उत्पादन है उसमें भी काफी वृद्धि हुई है।
6: जैसे आपको बताया कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मैंने शुरू में बताया था कि टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, या रेन गन है, ये या एक माइक्रो स्प्रिंकलर भी आता है जो सब्जियों की खेती में इस्तेमाल करते हैं। जो किसान भाई हमारे सब्जियों की खेती कर रहे हैं इस समय, वो अपने बड़े आसानी से फव्वारा सिंचाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रो स्प्रिंकलर दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में ही पानी की बचत करीब करीब 20-25% होती है और उसकी दक्षता 80-85% देखी गई है। और इसमें भी आप चाहें तो माइक्रो स्प्रिंकलर में आप खाद एक साथ लगा सकते हैं पानी के साथ घोल के, और खासकर नाइट्रोजन वाली खाद आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं, और आपका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, पानी बचेगा और आपकी लागत में कमी आएगी।
5: उसके साथ साथ देखिए जो आपका मुनाफा है जाहिर तौर पर उसमें भी इजाफा होगा, जिसका फायदा आपको मिल सकता है। फिलहाल अगले दर्शक जो है वो बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुवचन जी, बहुत बहुत स्वागत।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: बिल्कुल,
4: देखिए इसमें कल्ले ना बनने के जो कारण सबसे प्रमुख है वो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। आपने उर्वरक तो डाल दिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगातार फसलें लेने से हमारी मिट्टी की ताकत कम हो जाती है, और उसमें आपको जो जैविक खाद है हमारी, गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, इनका प्रयोग भी जरूर करें किसान भाई
5: जी।
4: जो हम यूरिया और फर्टिलाइजर उर्वरक डालते हैं उन खादों का प्रयोग भी बहुत जरूरी होता है
5: जी।
4: वो तो अब नहीं किया जा सकता इस समय पे, आप मेरे हिसाब से नाइट्रोजन का प्रयोग करें, 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की जो संस्तुत की गई है, और अब अच्छा समय चल रहा है, आप उसमें नाइट्रोजन डालेंगे तो ब्यांत होगा
5: जी। बिल्कुल, ब्यांत
4: उसमें यही कर सकते हैं,
5: हो सकते हैं, यही एक विकल्प जिसको आप अगर चाहें तो उसका कर भी सकते हैं, इस जानकारी को अपना भी सकते हैं। साथ ही यहाँ उर्वरकता क्षमता की बात हमने की डॉक्टर खन्ना, और क्योंकि सतही सिंचाई जब की जाती है तो माना यह भी जाता है कि जो भूमि की उर्वरता है, जो ऊपर काफी अच्छी अगर उसमें जो गुण मौजूद रहते हैं उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो क्या जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है इनके द्वारा हम ये भी मान सकते हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है?
6: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए आप जब सतह सिंचाई इस्तेमाल करते हैं तो पानी भरते हैं और पानी के साथ आपकी उर्वरक जो जमीन में उपलब्ध होते हैं वो पानी के साथ घुल के नीचे जाने का संभावना रहती है, जबकि आपकी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में आप उर्वरक पानी के साथ देते हैं और जड़ों के पानी आपका बड़ा नियमित मात्रा में देते हैं, जल्दी जल्दी देते हैं और उससे आपकी जड़ों के चारों तरफ रहता है और खेत पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। उससे आपकी न केवल सॉइल की हेल्थ, जो मिट्टी की मृदा की शक्ति है और हेल्थ जिसे कहते हैं, आज हमेशा एक आ जा रहा है कि सबकी हेल्थ चाहिए, ऐसे ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ना केवल आप ज्यादा पानी इस्तेमाल करते नहीं है, ना ज्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो मिट्टी की सेहत है उसका भी आप ख्याल रख सकते हैं अगर इन पद्धतियों का आप इस्तेमाल करते हैं अपनी लागत को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो भूमि की गुणवत्ता है, उत्पादन क्षमता है, उसमें भी इससे इजाफा हो सकता है। साथ ही डॉक्टर दिनेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने बात की कई तरह के जो रोग हैं या कीट हैं उनका हमारी फसल पर हमला होता है, तनाछेदक का आपने यहाँ जिक्र किया, इसके अलावा और कौन से ऐसे दूसरे रोग हैं जिनका हम मान सकते हैं या कीट हैं जो कि फसल को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं इस समय में?
4: देखिए, शुरू की अवस्था में जो कीट है प्रमुख, वो तना छेदक है धान में, जैसे अभी चर्चा हुई थी, और दूसरा पत्ती लपेटक है
5: जी,
4: जो पत्ती को सिल देता है, और तीसरा इसमें कई बार समस्या जो है वो भूरे फुदकों की भी आ सकती है, भूरे फुदकों पे भी आपको निगरानी रखनी है
5: जी।
4: और एक है निमेटोड, सूत्रकृमि
5: जी।
4: सूत्रकृमि का प्रभाव खास करके उन क्षेत्रों में आता है जहाँ पे फसल में पानी कम होता है, ऊंचे की जमीन हो या पानी ना रुकता हो, उन दशाओं में धान में सूत्रकृमि आ जाता है। पहचान यही है कि पौधे की बढ़वार इसकी रुक जाती है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, और अगर ये कमी लगातार बनी रहती है तो आखिर में जाके ऐसे पौधों में बालियां नहीं लगती
5: जी।
4: इस तरफ भी आप किसान भाइयों को ध्यान देना है। साथ ही साथ कुछ रोग भी होते हैं धान में जो इस समय आ सकते हैं, उसमें सबसे प्रमुख है आपका जीवाणु पत्ती झुलसा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये आ सकता है, या बदरा रोग है। बदरा रोग की संभावना बहुत ज्यादा होती है इस समय, क्योंकि नमी ज्यादा होती है वातावरण में हमारे, तो ऐसी दशा में बदरा रोग या ब्लास्ट किसान भाई कहते हैं वो आ सकता है।
5: बिल्कुल।
4: और जो बासमती उगाने वाले क्षेत्र हैं उनमें बकानी रोग की समस्या भी इस समय आ सकती है।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: और कोई समस्या आपकी?
3: बस यही हमारे खेत में है समस्या।
4: अच्छा, तो देखिए ये तना छेदक है और तना छेदक के जो सूंडी होती है, गिंडार होती है, वो तने के नीचे से अंदर घुस जाती है और अंदर का जो भी पदार्थ है तने का उसको खा जाती है और तना वहां से कमजोर हो जाता है, वो बड़ी आसानी से वो खिंच जाता है बाहर। तो इसके लिए आपको कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ये दवाई लेनी है, 3G, 4% में आती है, 4G 4 ग्रेन्यूल, इसकी आप 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बुरकाव कर दें मिट्टी में मिला के, और खेत में आपके नमी होनी चाहिए जब आप इसका बुरकाव खेत में करते हैं।
5: जी बिल्कुल जी। तो देखिए इस बात का आपको ख्याल रखना होगा जो नमी है वो भी इस वक्त आपके खेत में मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर खन्ना, जानना चाहेंगे आपसे, जो लगातार हम बात कर रहे हैं जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं उनसे फायदा काफी होता है, लेकिन अगर किसान इनको अपनाते हैं तो उनको किस तरीके से आर्थिक मदद जो है वो मिल सकती है?
6: मैंने आपको पहले भी चर्चा में बताया कि इसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही मदद दे रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं और अगर वो फलों की खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं, ये जो मदद है वो निर्भर करेगी कि वो कितने क्षेत्र में अपने इस टपक सिंचाई को लगा रहे हैं या फव्वारा सिंचाई को लगा रहे हैं या रेन गन पद्धति को लगा रहे हैं। जितना एरिया आपका किसान का है उसका नाप के हिसाब से इस पद्धति का डिजाइन बनाया जाता है कि कितना इसमें पाइप चाहिए, कितना इसमें फिल्टर चाहिए, कितना बड़ा पाइप चाहिए, वो सारी नाप तोल करके उस हिसाब से भारत सरकार ने इसके बड़े नियम बना रखे हैं कि कौन सी पद्धति में और कौन सी फसल में
5: जी
6: कितना क्षेत्र के लिए, उस हिसाब से उसकी लागत आती है और उस लागत के हिसाब से करीब करीब 50 से 90% तक इसमें सहायता दी जाती है
5: जी।
6: और हमारे लघु सीमांत किसान, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को अलग से इसमें छूट दी जाती है। तो अधिक से अधिक छूट कुछ राज्यों में यह 90% तक भी मिलती है
5: जी।
6: ये किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर वो इस पद्धति को इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हैं, अपने जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें और अपने क्षेत्र में ये देखें ये पद्धति में कितनी सहायता दी जा रही है और उसका भरपूर उपयोग करें
5: जी। जाहिर तौर पर जो आर्थिक मदद है देखिए ये आपको मिल सकती है, वहाँ भी आपकी जो लागत है काफ़ी कम हो जाएगी और इसके लिए आपके जो जिला स्तर पर बागवानी अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, कृषि अधिकारी से भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी पद्धतियाँ जिनके जरिए ना सिर्फ आप पानी की बचत कर सकते हैं बल्कि अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो मुनाफा भी आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं धान के बारे में भी लगातार, डॉक्टर दिनेश आपके पास आना चाहेंगे, सीधी बिजाई का आपने जिक्र किया था, क्या वहाँ पर इस समय की अगर बात की जाए या समसामयिक जो कार्य हैं वो कुछ अलग होंगे या इस तरह की देखभाल की वहाँ भी ऐसी ज़रूरत है?
4: सीधी बिजाई में जो है आमतौर पे किसान भाई जून के महीने में करते हैं, जब नर्सरी की बुआई करते हैं तभी सीधी बिजाई की जाती है
5: जी।
4: तो अब एक महीने से ज़्यादा की आपकी फसल हो चुकी होगी तो इसमें आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। इसमें एक तो खरपतवार की समस्या लगातार आती रहती है, बनी रहती है। दूसरे इसमें निमेटोड या सूत्रकृमि की समस्या आ सकती है और तीसरे इसमें लोहे की कमी आती है। ये तीन समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है सीधी बिजाई वालों के लिए। आपको लोहे की कमी की पहचान के लक्षण बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि सारे खेत में नहीं होता पीलापन, जगह जगह कहीं कहीं पर आपको पीलापन उसमें नजर आएगा और उसमें पीलापन ऊपर की पत्तियों में पहले आता है
5: जी।
4: और ऊपर की पत्तियों में आने के बाद पीलापन फिर नीचे की तरफ चला जाता है और अगर ये कमी लगातार बनी रहती है तो फिर पत्तियों का रंग सफेद हो जाता है। ऊपर से आप ध्यान से देखना, सफेद रंग होके फिर वो पत्तियां सूख जाती हैं
5: जी।
4: इसके लिए आपको सबसे कारगर उपाय यही है कि खेत में आप पानी भर दें। पानी जितना अच्छा भरा रहेगा खेत में तो लोहे की कमी उसमें नहीं आएगी
5: जी।
4: कमी वहीं आती है जहां पे पानी नहीं रुकता। पानी रोकने के आप प्रयास करें, फिर भी पीलापन ना जाए तो उसमें आप आयरन सल्फेट, जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका 0.5% का घोल
5: जी
4: बनाकर आप छिड़काव कर दें।
5: चलिए बिल्कुल, देखिए आप इसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं

0: पौधे के आसपास में, उसके अलावा पानी जान नहीं लगेगा तो उसमें खरपतवार नहीं होंगे, और खरपतवार नहीं होंगे तो किसान भाइयों की जो एक्स्ट्रा जो मेहनत लगती है खरपतवार निकालने में या उसको दवाइयों से ख़त्म करने के लिए, तो वो बच जाएगी और हमारे इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जो भी प्रोड्यूस लेंगे हम उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इरिगेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये और है कि हम इसके साथ में जो उर्वरक होते हैं उसका भी हम इसी ड्रिप लाइन के साथ ही उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। फर्टिगेशन का फायदा यह है कि हमको अलग से उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और जितना पौधे को आवश्यकता होती है उतना ही उर्वरक काम में लेते हैं। और इसमें जो फालतू, जैसे हम ब्रॉडकास्ट करके जैसे छिड़कवा विधि से कोई जैसे अपन यूरिया डालते हैं तो उसमें बेकार चला जाता है, लीच हो जाता है, तो इसमें उतने ही उर्वरक की जितने पौधे की आवश्यकता होती है उतना ही हम यूज करते हैं, तो इसमें उर्वरकों की जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम होती है।
1: ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में दो पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। प्रारंभ में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु धीरे धीरे पौधे का फैलाव बढ़ने से विकास के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर के हिसाब से दिसंबर जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटा, जबकि मई जून में 2 से 3 घंटे रखना होता है। वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जा सकता है।
0: और इसमें सरकार द्वारा अनुदान भी देय होता है। अनुदान के लिए हम नजदीकी जो हमारा कृषि विभाग का कार्यालय होता है, हर पंचायत समिति लेवल पे इसका कार्यालय होता है, और किस तरह से अनुदान मिलता है, कितना अनुदान मिलता है, वो सारी जानकारी हम कृषि सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
2: सिंचाई के पानी में रेत, लवण व अन्य कचरे के कारण ड्रिपर के पानी बहाव में अवरोध पैदा हो जाता है, अतः संयंत्र का रख रखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। उपयोगकर्ता को स्क्रीन डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। चूहों से लेटरल लाइनों की सुरक्षा करें। महीने में एक बार फ्लश वॉल को खोलकर संयंत्र चलावे ताकि जमा लवण निकल जावे। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 माह में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिपर को पौधों से दूर रखें। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को अवश्य साफ करना चाहिए।
0: और जो ड्रिप का प्रयोग है वो हम मुख्यतया सब्जियों और जो बगीचे होते हैं फलदार बगीचे उनमें हम अधिक करते हैं। आजकल तो सीरियल क्रॉप में भी जो खाद्यान्न फसलें उनमें भी करने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका महत्व है वो सब्जियों और जो फलदार जो बगीचे होते हैं उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, अभी आपने माइक्रो इरिगेशन के बारे में सुना, सूक्ष्म सिंचाई। आप में से काफी किसान भाइयों ने इस सिंचाई के बारे में सुना होगा। ये हमारी ड्रिप सिस्टम के बारे में सभी किसान भाइयों ने सुना हुआ है और अच्छे अच्छे से जानते भी हैं कि हमारा जो पानी है, हमें झाबुआ जिले में पानी की काफी आवश्यकता है, यहाँ पे पानी की काफी कमी है। इस वजह से किसान, बहुत सारे किसान है वो दोबारा फसल नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसकी सहायता से हम कम से कम पानी में अच्छी से अच्छी उपज ले सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों को जानेंगे, आइए सुनते हैं।
5: स्थान है जहाँ बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें

0: रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है।
1: सबसे पहले इसमें करना क्या है, सीड को कलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन के पहले सबसे पहले स्मार्ट पेड़ को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं कोई बच्चा पेड़ नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, टेढ़ा मेरा पेड़ नहीं, देखने में एकदम स्मार्ट हो, टेढ़ा मेरा नहीं हो, मेन स्टेम ऊपर हो, उसी से उसका कलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग प्लस ट्री कहते हैं। तो अभी तक पॉपुलर कटिंग और ETP लगा सकते हैं। इसके अलावे है जो महोगनी है, सागवान है, सहजन है, फूलझारू हुआ, नीम का भी समय आ रहा है, बांस का भी है, डिफरेंट बांस का भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके बाद जामुन है, इस तरह के सीड को कलेक्शन किया सकता है। सब सीड कलेक्शन करके पहले उसको सुखाकर ग्रेडिंग कर लेते हैं, ग्रेडिंग करके छांट के उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्लोरोपाइरिफास बहुत जरूरी है। क्लोरोपाइरिफास 2 मिनट, 5 मिनट या जीरम या थीरम से उसको ट्रीटेड करके तभी लगाना चाहिए। कटिंग की भी जहां तक बात है, चाहे कटिंग पॉपुलर हो या कोई बांस हो या एनी अदर हो, उसमें भी उपचारित किया सकता है। जैसे क्लोरोपाइरिफास 2 ml पर लीटर के रेट से उसमें 2-4 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट उसे उपचारित लगाना चाहिए, ताकि वे इन्फेक्शन और फंगल और इंसेक्टिसाइड का जो रहता है उसमें इस तरह से किल होता है, फ्रेश हो जाता है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं।
1: लगाते हैं
0: पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं।
1: पॉलीथीन में लगे पौधे है, थोड़ा सा प्रबंध पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रबंध, टिकाऊ प्रबंध, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो या प्रॉब्लम ज्यादा हो तो उस पर तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल अदरवाइज नहीं। समय समय पर जैसे कि हम लोग नेट हाउस, पॉली हाउस में, मिस चेम्बर में रखे हुए हैं, नहीं है तो कम से कम छांव रखना चाहिए, हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए, किसकी मोर्टिलिटी हो नहीं रही है, सूख रहा है, किस कारण से, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वीड वगैरह या और भी तरह के जो है वो हमेशा निकालते रहना चाहिए, ताकि हमेशा मेंटेन रहे और इसको कोई बढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। समय समय पर फॉर्मेलिन या और भी क्लोरोपाइरिफास थोड़ा सा स्प्रेइंग कर देना चाहिए, हल्का फुल्का, जब इस तरह के कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन अगर होता है तो उपचारित करना चाहिए। इस तरह से करने पर वैज्ञानिक ढंग से या ज्यादा बेहतर होगा, किसान को बाद में मोर्टिलिटी नहीं होगा।
2: आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियाँ, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
3: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: जितना जरूरी पानी इकट्ठा करना है, उतना ही जरूरी है पानी की बचत करना। खेत में पानी की काफी खपत होती है, इसलिए किसानों को खेती में ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे पानी की बचत हो। ऐसा ही एक तरीका है ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति, पारंपरिक सिंचाई में हम पूरा पानी खेत में छोड़ देते हैं, जिससे सिर्फ कुछ पानी ही पौधों को मिल पाता है और बाकी पानी व्यर्थ चला जाता है। टपक सिंचाई पद्धति या फिर कहें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का मतलब है पानी को उस जगह पर ले जाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, यानी पौधों की जड़ों तक। इस पद्धति में कुल पानी को छोटे छोटे सूक्ष्म हिस्सों में बांट दिया जाता है, इसलिए इसे सूक्ष्म सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। बूंद बूंद सिंचाई से हम सिंचाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही पानी की बचत भी कर सकते हैं और उसके साथ ही भरपूर फसल भी ले सकते हैं, यानी दोगुना मुनाफा। बूंद बूंद सिंचाई में खेतों में पाइपों का जाल बिछाया जाता है और पौधों की दूरी के हिसाब से इसमें छेद किए जाते हैं, जिसके द्वारा पानी खेतों में पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। सबसे पहले पानी एक बड़ी टंकी में इकट्ठा किया जाता है, इसके बाद मोटर या पंप के जरिए उसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पहुंचाया जाता है। पहले पानी रेत वाली छलनी यानी कि सैंड फिल्टर से गुजरता है। पानी टंकी में जमा रहने से काई जमने का डर रहता है। सैंड फिल्टर में एक खास प्रकार की रेत होती है जो कि पानी के साथ साथ आई काई को रोक देती है और छना हुआ पानी संयंत्र में आगे बढ़ता है। रेत वाली छलनी से पानी खाद पंप में आता है। खाद पंप में पानी में खाद को मिला दिया जाता है। पानी में घुली हुई खाद संयंत्र के अगले पड़ाव में आगे बढ़ती है। उसके बाद पानी स्क्रीन फिल्टर में आता है। स्क्रीन फिल्टर पानी में घुली हुई अशुद्धियों को छान देता है। इस तरह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से बड़ी सी पाइप खेतों तक जाती है, जिसे मुख्य पाइप कहा जाता है। मुख्य पाइप से एक और पाइप जुड़ी होती है जो खेतों तक जाती है, जिसे हम सहायक मुख्य पाइप कहते हैं। इन पाइपों से नलकियों को जोड़ा जाता है जो कि सीधे अंदर खेतों में फसलों की जड़ों तक पानी ले जाती हैं। इन नलकियों पर ड्रिपर लगाए जाते हैं जिसके जरिए पानी बूंद बूंद कर पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। बूंद बूंद सिंचाई के फायदे। सबसे पहला फायदा ये है कि बूंद बूंद कर पानी पौधों की जड़ों तक जाता है और खाली जगहों में पानी जमा नहीं होता।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: जिससे खरपतवार के पैदा होने का भी खतरा नहीं रहता। दूसरा फायदा, अगर खरपतवार नहीं होंगे तो उसे हटाने के लिए खरपतवार नाशक का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा, जिससे न सिर्फ खरपतवार नियंत्रण दवाइयों का खर्च कम हो पाएगा बल्कि मजदूर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे किसानों की लागत में कमी आएगी। तीसरा अहम फायदा ये है कि इस पद्धति के जरिए खाद को पूरे खेत में समान रूप से पहुंचाया जा सकता है। पानी के जरिए खाद पौधों की जड़ों तक पहुंचा दी जाती है, जिससे खाद की खपत कम होती है और बर्बादी में भी कमी आती है। बूंद बूंद सिंचाई से सब पौधों को बराबर पानी मिलता है और फसल को उतना ही पानी मिलता है जितनी जरूरत हो। इससे न सिर्फ पैदावार ज्यादा होती है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खुली सिंचाई के मुकाबले बूंद बूंद सिंचाई पानी बचाने में सहायक है। टपक सिंचाई पद्धति में पानी की और भी अधिक बचत होती है। खुद प्रधानमंत्री पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दे चुके हैं।
3: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने टपक विधि को सीखा, धान की खेती को सीखा, धान में होने वाले खरपतवार के बारे में जाना और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब जाना। किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटाबिल 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटाबिल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ। प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ। खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ। खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान। इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 की ऐप के माध्यम से भी आप खेती बाड़ी कार्यक्रम को सुन सकते हैं। साथ ही आप आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425413603 पर। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम हर रोज एक नए विषय पर आपको जानकारी देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक लेकर आते हैं, और साथ ही हम हमारे जो किसान हमसे जो आते हैं आग्रह करते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि उनके जो समस्याएं हैं उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे एक किसान ने कड़कनाथ के ऊपर हमें कुछ जानकारियों के लिए हमें आग्रह किया था। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हम कड़कनाथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबुआ ब्लॉक के कलीपुरा गांव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया। अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है। आपको मिलवाते हैं रीता जी से, उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना, आइए सुनते हैं अब रीता जी से, जो कि झावा ब्लॉक के अंतरविल्ला के पास स्थित कलीपुरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: क्या
2: है? रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए उनके?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते ये। अच्छा। बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
3: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
4: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पर हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के, जैसे गेहूँ के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलाने वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको हम कार्य कर रहे हैं।
3: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का

0: मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है आरबी ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
1: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं, तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है, ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके। और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं, जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
0: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
1: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें, जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे, उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की।
0: राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
1: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देख रेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है, उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, अगर करें 100% करें।
0: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है।

0: इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आइए चर्चा करते हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर।
2: मुर्गी कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1951 के दौरान भारत में मुर्गियों की संख्या 7,35,00,000 थी, जो 2019 में बढ़कर 85 करोड़ को भी पार कर गई। अकेले अंडा उत्पादन की ही बात करें तो सालाना 10.19% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि मुर्गी पालन कारोबार में 75.32% हिस्सा मांस का और 24.67% अंडों का है। अंडा उत्पादन के मामले में भारत 5वें नंबर पर है, जबकि मांस के क्षेत्र में मुर्गी मीट का कारोबार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय लोगों को भी मुर्गी का मीट काफी पसंद है। यही वजह है कि यहाँ जितना भी मांस उत्पादन होता है उसका आधा मुर्गियों से आता है। 2018-19 के दौरान मुर्गी मीट का उत्पादन 40,00,000 टन था। मुर्गी कारोबार में तेज बढ़ोतरी के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं, खासकर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के बाद लोगों का रुझान अच्छे खानपान की तरफ गया है और मुर्गी उत्पादों के भाव में कमी ने भी इस कारोबार को फलने फूलने में मदद की है। अंडा और मांस में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए मुर्गी व्यवसाय कुपोषण के खिलाफ जंग में अहम हथियार साबित हो सकता है।
3: हमारे देश में जो प्रोटीन की उपलब्धता है वो WHO के हिसाब से अभी भी बहुत कम है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अभी हमें 3 अंडे एक हफ्ते में खाना चाहिए और वो 3 अंडे हमारी अगर लेते हैं तो बहुत लगभग 200 बिलियन अंडा प्रोडक्शन की होना चाहिए देश में। वहाँ हम तो हमने पहुँचा है अभी तक इस साल की आंकड़े के हिसाब से 122 बिलियन तक। तो मुर्गी जो किसान अपने घर पे रखते हैं, लगली मान लीजिए किसी किसान 50 मुर्गी रख ली, 50 मुर्गी से रोजाना एक अंडा अगर निकालते हैं तो हिसाब से लगभग 30 से 40 अंडा डेली निकालता है। 30 से 40 अंडा तो किसान खुद खा नहीं सकते हैं, बाकी अंडा वो बाजार में बेचते हैं।
2: सिर्फ अंडा और मांस ही नहीं बल्कि मुर्गियों की बीट से भी पैसा बनाया जा सकता है। बीट में मिट्टी के लिए जरूरी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो खेतों में बेहतरीन खाद का काम करते हैं, बल्कि मशरूम पालन में मुर्गियों की बीट की जरूरत पड़ती है। इस तरह मशरूम उत्पादकों और किसानों को बीट बेचकर भी अलग से कमाई की जा सकती है। मुर्गियों की बात चली है तो कड़कनाथ का नाम कैसे भूल सकते हैं। काले रंग के इस मुर्गे का मीट और अंडा दोनों ही बहुत महंगे बिकते हैं। एक वयस्क सफेद मुर्गा जहां करीब 200 रुपए में बिकता है, वहीं कड़कनाथ की कीमत 500 से 600 रुपए तक हो सकती है। दूसरी ओर आम मुर्गों के मुकाबले कड़कनाथ पोषण के लिहाज से भी बेहतर है, इसलिए कड़कनाथ की बढ़ती मांग को देखते हुए आज के युवा भी इसके कारोबार से जुड़ने लगे हैं।
4: मुर्गी पालन आज के दौर में अच्छा और सफल व्यवसाय बनता जा रहा है।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आइए चलते हैं कल्लीपुरा गांव में और मिलते हैं अरविंद भाई से और जानेंगे कैसे अरविंद भाई अपने फार्म में मुर्गियों का दाना पानी करते हैं, उनका देखरेख करते हैं, उन्हें समय समय पर भिन्न भिन्न दवाइयों के माध्यम से उनमें आने वाले रोगों और उनमें उनको क्या दवाइयां देनी चाहिए, उन सारी चीजों को हमें बतलाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। अरविंद भाई, आप हमने कल्लीपुरा में आप उबा है ते यहाँ पर कड़कनाथ नो बिजनेस शुरू करियो है ते ये कांती कुकड़ा लायो न केरती शुरू करियो इन।
5: मैं 2 साल पहलखो तो चालू करे लो यो बिजनेस पहलखो हो कुकड़ा लावे लो अनुभव ले दो।
1: अच्छा,
5: ते तीने डॉग ताहर का जो वेटनरी डॉक्टर साहब रे,
1: अच्छा
5: तीने ही बता दियो के तो एक हटो मारो बच्चे है तो 500 ले जाऊं પણ મેં પછી તને કીધું કે તું તને એક રાય બતાડી કે તું હો પાળી દેખ બિલકો કેટલો ફાયદો મળે કેટલો નહીં, તેની બાદ તું વધારે લેજે એમ કરી. તો મારા મનમાં એમ થયું કે સાલો હો લીલી હાઉ ઇન્સાન ને થોડોક લાલચ રહે મતલબ કમાવાની. તે 500 એક હટવાના ફેર મારા મનમાં એમ થયું કે હો પાળી દેખું એમ. હો પાડવા બાદ ફેર મને બેનિફિટ થયો, ફાયદો થયો,
6: કડકનાથ
5: ના ઉપર જેસે ઊંઘાવા લાગી જાય તેની દવા હે, અને હેલી કઈ અચાનક બીમારી થઈ જાય તેની દવા હે, કઈ વાયરસ જેવી હોય તેની દવા હે, તો હું તેનો સમય સમય ઉપર ઉપયોગ કરું તો કુકડો એક બી નહીં મરે.
6: હમણાં તારો હું હોશિયાર છે, અગાડી તું કેટલા કુકડા પાડવાનો હોશિયાર હે?
5: હમણાં મારે એક હેચરી લગાડવાની છે.
6: અચ્છા,
5: જો ઈંડા મેલી તે ડાયરેક્ટ ચેલા નીકાળે હેચરી.
6: અચ્છા, હેચરી. હા,
5: હેચરી લગાડવાની છે અને થોડોક મોટો લોન લેવાનો સરકાર થી કઈ આગ્રહ કરું.
6: અચ્છા અચ્છા અચ્છા,
5: થઈ જાય તો મારી જમીન છે તારકો બનાવતી મોટું ફાર્મ.
6: અચ્છા અચ્છા,
5: 2000 સુજાનું.
6: બિલકુલ બિલકુલ. તો હમણે મતલબ હમણે સરકારી માં હું મદદ કરી રહી ફિલહાલ.
5: સરકાર તે હમણાં એક લોન ના બારામાં ઈ સાલ મતલબ આવ્યું છે. હું પશુપાલન વિભાગ માં ગયેલો જાણકારી મળી કે તમે લોન લઈ શકો.
6: અચ્છા,
5: લોન લઈ શકો અને કુકડા પાળી શકો. તે બધા ડોક્યુમેન્ટ બતાડ્યા છે તે હું તૈયાર કરી રહ્યો છે અને કરાવવું પડે એ લોન, તાકી તે આપણું અગાડી પડી શકી ને. અને તેના એમ બતાડ્યું કે એમાં મતલબ અનુદાન બી છે.
6: અચ્છા,
5: તે અનુદાન હરું મતલબ આપું કરી શકીએ.
6: બિલકુલ. એની હારું કોણ કોણ આદમી આગાડી આવીને લોન કોણ કોણ લઈ શકે? એની હારું કઈ મતલબ એમ તો નહીં કે ખાલી મતલબ જગ્યા જોવે, યા હું હું એનો પ્રાવધાન હે અગર અગર કઈનો લેવા માંગે તેની હારું?
5: હમણાં મતલબ એમ હે કે આપણ હમણાં હેલી કહેવાનો મતલબ જેના જગ્યા હે ને,
6: હા
5: જગ્યા હોય કિસાન બનેલો હોય તો લઈ શકે.
6: બિલકુલ.
5: અને ફેર તેમાં એમ હે કે હેલી વધારે અગર મોટો લોન લેવો હોય ને,
6: હા
5: તે પૂરો પ્રોજેક્ટર તૈયાર કરવું પડે.
6: અચ્છા,
5: હા તેમાં હું કેટલું લાગે ખાવાનું.
6: અચ્છા, બિલકુલ બિલકુલ,
5: લાવો સબ લીખવું પડે.
6: બિલકુલ. અગર આપણે કઈનો ગામનો કોઈ નિવાસી અગર એના પ્રોજેક્ટને કરવા માંગે તો કોની મદદ લઈ શકે?
5: એ પશુપાલન
6: પશુપાલન
5: વિભાગ ને ડોક્ટર થી મળે.
6: અચ્છા,
5: અને તાહરકુ સેશન કરાવવું પડે, તાહરકુ ફોર્મ ભરાવવું પડે, ઉદ્યોગિક વિભાગ માં જવું પડે.
6: બિલકુલ બિલકુલ. હા, તો સબીના મેડમ હું તારથી સાંભળવા માંગી કે તું બી હાથે હાથે અરવિંદભાઈ ની હાથે હાથે તમે બી કુકડા પાળી રહ્યા હે, તો એમાં મતલબ કેટલો ફાયદો થઈ રહ્યો અને તમારો શું વિચાર છે એના કડકનાથ ને લઈને?
7: ફાયદો તો છે એના, મતલબ નાના સુજા આલે તેના મોટા કરવાના અમારા હાથમાં.
6: બિલકુલ.
7: મતલબ બીમાર તે અચાનક થી થઈ જાય એના આંખોમાં, મતલબ આંખો થી બીમારી થાય. દેખાય નહીં દેતા.
6: અચ્છા, દેખાય નહીં.
7: હા, દેખાય નહીં દેતા. બાકી અચ્છા હે બિઝનેસ.
6: અચ્છા,
7: બિઝનેસ કરને દો મતલબ દો સાલ હો ગયે હમ બિઝનેસ કર રહે, તો હમકો અચ્છા લગ રહા.
6: બિલકુલ.
7: બાકી ઇનકો બડે કર રહે મતલબ ઇતે મતલબ એક એક દો એક દો બિકતે રહેતે. બાકી મેરા વિચાર હે કે યે પૂરે ક્યું નહીં બિક રહે.
6: અચ્છા, થોડા સા બડે લેવલ પે ઉસકો બેચે.
7: હા, બડે લેવલ પે બેચે તો તાકિ હમકો ભી થોડા ફાયદા મિલે.
6: બિલકુલ બિલકુલ.
7: ઇનકો મતલબ વો કર બિઝનેસ કરને સે ફાયદા મિલના ચાહીએ યું.
6: બિલકુલ. મતલબ જેટલા મોટા થઈ રહ્યા એટલા આપણ વૈસે જવા દો.
7: હા,
6: ફેર વધુ મોટા કરી નો કરે હે ને.
7: અબ ભી કરીબ 150 બડે બડે મુર્ગે મુર્ગિયા હે, પર વો મે બેચના ચાહતી પર અભી બિક નહીં રહે વો.
6: અચ્છા, ઓર
7: છોટે સુજે અભી 200 ખે.
6: બિલકુલ. તમારા કાફી ફાયદા હોગા.
7: હમારા ક્યા હે મુર્ગા ફાર્મ અંદર થોડા છોટા બના રખા થા, તો હમને એસા મતલબ સોચા કે ક્યું નહીં હમ રોડ પે લે જાય.
6: બિલકુલ.
7: તાકી યે બિઝનેસ હમારા અચ્છા ચાલે. યું કરકે હમને રોડ હાઈવે રોડ પે લાયે હૈ તાકી બિકે યું કરકે. તો બિઝનેસ કરને સે અચ્છા હે.
1: किसान भाइयों, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, सबीना जी बता रहे थे कि उनका जो पोल्ट्री फार्म है उसमें काफी, उनके पास अभी काफी मात्रा में मुर्गी मुर्गियां है, और पोल्ट्री फार्म का गांव के अंदर होने की वजह से लोगों में ज्यादा पता नहीं था इस बारे में, लोगों को थोड़ी सी समस्या होती थी वहां तक पहुंचने में। तो अभी उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म को रोड के एकदम करीब अपना खुटाया, स्कूल के जस्ट पास में उन्होंने अपनी नया घर उन्होंने बनाया है, और साथ में एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी रखा है जहां पर उनकी एक छोटी सी दुकान है, और वो वहां पर अंडे और मुर्गियां दोनों वहां पर बेचते हैं। दोस्तों, आप अपना अंतरवेलिया से भगोर वाले रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं तो आप जरूर इनके अपने कड़कनाथ फार्म पे विजिट कर सकते हैं, इनसे इन कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले भी सकते हैं, और अगर आपको अधिक मात्रा में या कम मात्रा में अगर आपको कड़कनाथ लेना चाहते हैं तो आप अरविंद भाई से संपर्क भी कर सकते हैं, हम इनका नंबर आपको दे देंगे। और आप भी खुद उस रास्ते से निकल रहे हैं तो आप उन कहीं पे पास की किसी भी दुकान से पूछ कर अरविंद भाई के यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप लो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। तो आपको ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सकें।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पालें पहले, अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
1: बिल्कुल
2: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
1: बिल्कुल
2: कितने बिक रहे हैं
1: बिल्कुल
2: है ना, और कितना खा रहे हैं वो सब अनुमान लग जाएगा।
1: हाँ।
2: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
1: फार्म बनाना पड़ेगा
2: उसको
1: बिल्कुल,
2: और थोड़ा ऊंचाई में रहना है चाहिए वो।
1: अच्छा, ऊंचाई में होना चाहिए
2: कम से कम 13-14 फीट।
1: उससे
2: क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी उसको
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और फिर उसके पहले बनने के बाद फिर ये लकड़ी का भूसा रहता
1: है
2: छुरी को डाल देने के नीचे
1: बिल्कुल,
2: और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी
1: बिल्कुल, इनको लाइट की जरूरत रहती है,
2: लाइट बहुत गर्मी उसको चाहिए।
1: अच्छा, गर्मी ज्यादा चाहिए।
2: हाँ। और ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक होनी चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना
1: है। वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
2: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का।
1: अच्छा,
2: क्या है कि वायरस आ जाए,
1: वायरस आने के डर,
2: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा,
2: चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु

0: रहते हैं ना चप्पल से
1: अच्छा सारे मर जाते
0: वो, उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं और चुने में गिर जाते हैं, तो मर जाएंगे,
1: मर जाएंगे ऐसा। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर सकते हैं।
0: और अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
1: अच्छा लाइट,
0: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको,
1: बिल्कुल लगातार उसको जलाते रहना चाहिए।
0: जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ,
1: बिल्कुल
0: वो छोटे वाले,
1: छोटे वाले।
0: हाँ,
2: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल रखना करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है मेरे दादाजी की ली हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए, तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गियां लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया, और करते करते वो 40 हो गई, और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे, तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: भारत बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
0: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है, साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बेबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बेबकॉक की 80-85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।
5: ने एक मुर्गी से एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200 से 250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200 से 250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया उनकी किसान की आमदनी होती है। तो अगर 4 लाख से 5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है तो लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है। और ये जो आमदनी होती है ये रोज का आमदनी है।
3: कौन सी किस्म आपको चुननी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 2.5 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं।
2: देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में है। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है, तो हम क्या करते हैं लोगों को, हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गियां खरीदते, मुर्गे खरीदते, मुर्गी हमारी खुद की रहती, मुर्गे खरीदते और हर महीने मुर्गा बेच देते। तो हम हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200 से 500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली एनसीआर में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते हैं।
3: सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फसलों में और जीव जंतुओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, बदलते वातावरण में कैसे हम हमारे पशुओं को, हमारे चूजों को वातानुकूलित रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
3: मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे, वहां से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे, ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए, यानी अगर आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1000 से 1500 वर्ग फुट के आवास की जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में खिड़कियों को बोरों से ढककर रखना होगा और अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे, जबकि गर्मियों में उन्हें अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होगा। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे से ही दाना खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27 से 28% कैलोरी होनी चाहिए, साथ ही 3 से 4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
5: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध है, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गांबोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए, उसमें रानीखेत दो बार लगाते हैं, और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए, जो सारे बीमारी। और हमने जो किसान को बोलते हैं, आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए, तो उसके रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है।
3: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसेल संक्रामक रोग और मैरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मैरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मैरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2 से 3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है, इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, समय समय पर क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं दोस्तों, जो प्रतिभा, जो गायिका हमारे साथ है, आप उनके बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। मेरे साथ हैं संध्या जी। मैं संध्या जी का स्वागत करते हुए, उनको पुकारते हुए उनसे छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले, हमारी फैमिली मेंबर, आज की कलाकार के फैमिली मेंबर जुटे हैं संगीत से प्रभावित होकर, पैशनेट होकर, तो आप उनसे बात करो ना मैम, जरा उनको बताओ तो सही, आप कौन हो, कहाँ हो, क्या करती हो आप?
1: नमस्कार समीर जी, मैं संध्या। आप सबका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है, आप सब यहाँ मुझे सुनने के लिए आए। और मैं सिंपल होममेकर हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड आईटी में हैं, मेरे दो बच्चे हैं। और सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से है, स्कूल टाइम से गाती आई हूँ। तो अभी तो फिलहाल बस इतना ही बता सकती हूँ, बाकी तो समीर जी जो पूछेंगे वो बताऊंगी।
0: ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सो क्यूट। सो संध्या जी, एक बात बताइए, अभी आप बैंगलोर रह रहे हो और आप एक होम मेकर हो, दैट्स वेरी नाइस। ऑफ कोर्स इससे बड़ा काम इस दुनिया में हो नहीं सकता। लोग बाग इसको बड़ा आसान मानते हैं, दरअसल आसान है नहीं ये काम।
1: नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। आसान तो नहीं।
0: लेकिन आप बैंगलोर में हमेशा से रहते रहे या कहीं और से आए?
1: नहीं, हम एक्चुअली काफी सालों से बाहर थे, मतलब इंडिया से बाहर थे। तो हम 3 साल पहले इंडिया वापस आए हैं, तो 3 सालों से हम बैंगलोर में हैं।
0: आपके कहने के अंदाज से मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि आप शायद लखनऊ के हैं?
1: लखनऊ की तो नहीं, मैं प्रयागराज से हूँ।
0: ओके, प्रयागराज। हाँ, तो बिल्कुल पास में ही हुआ, ज्यादा दूर नहीं हुआ।
1: हाँ, क्योंकि पड़ोस में।
0: हाँ जी, क्योंकि अगल बगल में, मतलब उस इलाके में लोग बाग मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं।
1: जी।
0: मैं वो सुन रहा था। चलिए, तो संध्या जी मुझे ये बताओ, बैंगलोर में भी आपको कुछ वक्त तो हो गया। ओके
1: जी, 3 साल हो गए।
0: 3 साल, ऑलराइट ऑलराइट। तो बैंगलोर में खाने की, मतलब कोई डिश वहीं की पर्टिकुलर, देखिए आप मेरे को प्लीज मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और केएफसी का चिकन मत बताना, ये तो ब्रांड्स चारों तरफ अवेलेबल है। बैंगलोर की कोई खास, मतलब टिपिकल बैंगलोरियन चीज जो आपने खाई, जिसको खा के मजा आ गया हो आपको, ऐसा कुछ चीज बताइए ना।
1: एक्चुअली सच कहूं समीर जी, तो खाने में मुझे अपने तरफ की चीजें ज्यादा पसंद है, और मैं बहुत देसी हूँ, मुझे बहुत बेसिक जो सीजनल चीजें होती है ना, वैसी चीजें खाना पसंद है जो स्ट्रीट पर मिलती है ऐसे। तो खाने का बहुत शौक नहीं है, बट मैंने डोसा खाया यहाँ साउथ में आके। और मुझे यहाँ पर जो राइस के डिशेस बनते हैं ना, लेमन राइस, चित्रन्ना, कुछ कुछ पोंगल, मुझे वो सब ज्यादा अच्छा लगता है खाने में।
0: wow.
1: तो मैं ज्यादा वही प्रेफर करती हूँ खाना। जी,
0: बढ़िया। तो मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि आप बाहर से पहुंचे बैंगलोर में, तो क्या होता है ना, बाहरी व्यक्ति किसी भी दूसरी जगह पहुंचता है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है
1: जी,
0: कि
1: जी।
0: भाई वहां पर लोकल क्या मिलता है। जैसे अगर मैं पटना चला जाऊं तो लिट्टी चोखा खाने की कोशिश करूंगा।
1: हाँ,
0: अगर राजस्थान चला जाऊं तो बाटी, दाल बाटी खाने की कोशिश करूंगा। अहमदाबाद चला जाऊं तो ढोकला, फाफड़ा खाने की कोशिश करूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैं कोशिश कर रहा था जानने की कि बैंगलोर में ऐसी क्या चीज मिलती है।
1: मैंने एक्चुअली यहाँ जो नया ट्राई किया वो मुरक्को, कुछ स्नैक होता है यहाँ साउथ में ना, मुरक्को, मैंने वो खाया, मुझे वो अच्छा लगता है।
0: ओके
1: तो
0: नहीं, क्या किस चीज का होता है वो, मतलब ये कुछ नमकीन दालमोट जैसी चीज है या क्या?
1: हाँ, नहीं दालमोट नहीं है, आई थिंक वो अपने तरफ उधर यूपी में चकली बनाते हैं ना पापड़ के साथ में।
0: अच्छा अच्छा,
1: वैसा। हाँ, वैसा कुछ वो दाल से और मसालों से बनाते हैं।
0: वाओ, ओके
1: जी।
0: तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि संध्या जी कुछ कुछ तो बैंगलोर में ढूंढ रही हैं, मस्त खाने की चीज है, तो वो प्रयागराज से, यानी कि वही लिट्टी चोखा के और उसी इलाके से। लेकिन
1: बिल्कुल
0: लेकिन चलिए, एक नाम सुनने में आया मुरक्को, ऐसी कोई चीज। अभी तो एक बार ठहरते हैं, पहले संध्या जी के जरा गाए हुए गीतों का आनंद उठा लें, फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी, हमेशा की तरह झूम जाने वाली शाम। संध्या जी, चलिए आपके म्यूजिक के ही बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आपका म्यूजिक क्या है। किस तरीके का म्यूजिक आपको ज्यादा पसंद है? क्योंकि आप जिस इलाके को बिलोंग करते हो वहां भोजपुरी गीत भी बहुत चलते हैं, फोक म्यूजिक बहुत चलता है, बनारस बिल्कुल पास में ही है और मतलब बिहार भी बिल्कुल बस बॉर्डर में ही लग जाता है, लेकिन फिर भी गजल, बॉलीवुड सिंगिंग, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफी, भोजपुरी, किस तरीके का संगीत आपको ज्यादा पसंद है?
1: मैंने समीर जी एक्चुअली गाना सुनना शुरू किया है, जो इन्फ्लुएंस जो है मुझ पर मेरी मम्मी का है, तो बचपन से उन्होंने ही गाने जो मुझे सुनाए, तो मतलब मैं ज्यादा रेट्रो गाने ज्यादा पसंद करती हूँ, जो बॉलीवुड गाने हैं, यानी 50s 60s 70s के आसपास के।

0: ज्यादा प्रेफरेबल वही है, मैं वही सुनती हूँ। कुछ 90s के गाने भी, 90s के तो खैर वो हमारा ही एरा था तो उसके गाने तो हमें पसंद है ही। तो और गजलों में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा लेट डेवलप हुआ, मतलब मैं कॉलेज आते आते मैंने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया, तो गजलें भी सुनती हूँ। मैं बहुत डाई हार्ड ऐसा नहीं है गजलों के बारे में, मैं इतनी फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ लाइट गजलें सुनती हूँ जो समझ में आ जाए मेरी। और भोजपुरी का तो ऐसा है कि पहले समझ में कम आता था, पर आजकल मुझे नया शौक अब डेवलप हुआ है, मैं पुराने भोजपुरी गाने सुनती हूँ जो लता जी ने, आशा जी ने ऐसे गाए हुए हैं, फिल्मों में गाए हुए हैं, वो मुझे बहुत पसंद है।
1: ओके ऑलराइट। तो दोस्तों ठीक है, बताया सिंध्या जी ने कि उनको गजलें भी कुछ लेवल तक पसंद हैं, तो
0: हाँ
1: जाहिर सी बात है सुनते हैं मजा आता है, कुछ टेंशन रिलीफ होती है या कुछ टेंशन हो जाती है। गजलों को सुनकर टेंशन भी हो जाती है भाई बिल्कुल
0: मुझे लगता है थोड़ा हैवी हो जाता है
1: थोड़ा
0: कभी
1: हैवी हो जाता है, हर समय दुखी
0: जी
1: दुखी रहना भी उचित नहीं है ना।
0: जी
1: बट ठीक है कोई बात नहीं। वैसी गजलें भी हैं जो कुछ अलग तरीके के भावनाओं को व्यक्त करती हैं, वो भी चीज मजेदार होती है, ऐसी बात नहीं है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: चलिए तो ये हुई संध्या जी के संगीत की बात। तैयार हैं दोस्तों, आइए ना इन गीतों का मजा लें जो संध्या जी ने इस प्रोग्राम के लिए हमारे लिए प्रिपेयर किए। लीजिए, पेश खिदमत है।

0: बहुत बहुत सुंदर गायकी, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल। चलिए, आपके म्यूजिक की बात हो गई, आपके शहर की बात हो गई, आपने कहीं और से आके उस शहर को अपनाया, उस शहर ने आपको अपनाया। अब थोड़ी सी आपकी शख्सियत के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। संध्या जी, जब आप छोटे से बच्चे थे
1: जी,
0: प्रयाग में थे शायद, जब वहीं पैदा हुए होंगे आई थिंक।
1: हाँ, मैं उधर उसके आसपास में ही हुई हूँ।
0: ओके ओके, कूल।
1: बेसिकली जी,
0: तब आप छोटे थे, जब आप थोड़े से पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोटे छोटे स्कूलों में जाना शुरू हुआ, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? आपके मन में क्या विचार थे, क्या सपने थे?
1: मुझे लगता है मैं शुरू से आर्ट्स के तरफ, मतलब डांस और म्यूजिक के तरफ बहुत इनिशियल, मतलब मैं शायद लोअर केजी अपर केजी में थी तब मैं परफॉर्मेंस करती थी स्कूल में स्टेज पर। तो मेरा बहुत इंक्लिनेशन शुरू से था, बट तब सोचा नहीं था क्या करना है। धीरे धीरे जब समझ आई, फिर मेरा डांस से थोड़ा म्यूजिक के तरफ ज्यादा हो गया, गाने लगी मैं स्कूल में। तो फिर तभी मुझे लगता था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूंगी, अच्छा लगता था मुझे। तो वही सोचते बड़ी हुई। फिर होता है ना, आप छोटे शहर से होते हो तो आप सोचते बहुत कुछ हो, लेकिन उतना आसान नहीं होता है। हमारे टाइम में तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं हुआ करता था, इतना इजीली एक्सेसिबल चीजें नहीं थी। तो मेन तो मुझे हमेशा ऐसे ही रहा कि मैं सिंगिंग करूं, मतलब किसी भी फॉर्म में। आप स्टेज पे कर सकते हो लाइव शोज, या रेडियो पे, या फिर आप प्लेबैक सिंगिंग। इनफैक्ट एक टाइम पे आके मुझे लगा कि मैं आरजे के लिए ट्राई करती हूँ। मतलब मैं लिटरली, हमारे शहर में नया एफएम जब लॉन्च हुआ ना, तो मुझे बहुत मन था कि मैं जाके इंटरव्यू देके आऊँ, मुझे आरजे बनने का बड़ा था। तो मुझे हमेशा ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रहा है, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, या फिर आर्ट्स, ये म्यूजिक सिंगिंग ऐसा।
0: नितिन भैया, एक कंपटीशन आ गया, ये भी आरजे बनना चाहते हैं, मर गए। अरे यार संध्या जी, आप गाना गाओ, अच्छा है ना, अच्छा गा रहे हो, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो?
1: नहीं नहीं, आप अब तो मैं सिर्फ गा ही रही हूँ अभी तो।
0: नाइस, नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा पर्सनली मानना है, मैं सभी दोस्तों को भी बोलना चाहूंगा, हर आवाज अच्छी होती है, ऊपर वाले ने बनाई है, प्रकृति ने दी है, हमें बस अपनी आवाज का टेक्सचर पहचानने की जरूरत है, उसका सिग्नेचर पहचानने की जरूरत है, और उसको हम इस्तेमाल करें, यही ऊपर वाले की मर्जी है। बहुत खूब, चलिए, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हुए आपके गाए हुए ये गीत हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बहुत मजा आएगा।

0: बहुत खूब, बहुत खूब है। संध्या जी, एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल पूछता हूं आपसे। आपके पास जितनी भी मेटीरियलिस्टिक चीजें मौजूद हैं, हो सकता है घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, टेलीविजन हो, फोन हो, किचन में बहुत सारे रखे हुए अप्लायंसेस हो, यूटेंसिल्स हो,
1: जी
0: या और भी बहुत सारी चीजें, सोना चांदी गहना, वो बहुत कुछ हो सकता है, क्या आप उन सब चीजों के लिए भगवान से शुक्रिया अदा करती हैं? आर यू सेलिब्रेटिंग दोज थिंग्स विच आर देयर विद यू? आपके पास जो कुछ भी है।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैं मुझे लगता है मुझे बचपन से भी जो कुछ भी मिला है टिल डेट टुडे, आज तक भी और शायद आगे भी जो मिलने वाला है या जो भी मिलेगा, मुझे हमेशा लगता है कि जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, जो आपको नहीं मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा. तो मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ. मुझे लगता है कि डेस्टिनी के हिसाब से ही चीजें आपकी लाइफ में होती है. तो भगवान का तो बिल्कुल दिल से हमेशा मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ. मुझे बहुत कुछ मिला है मेरी लाइफ में, तो बस जो मिला है सब उनके वजह से ही मिला है.
0: बहुत बढ़िया। होता क्या है ना संध्या जी, कि हम किसी चीज के बारे में एस्पायर कर रहे होते
1: जी
0: हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मुझे मैकबुक चाहिए, तो जी मुझे, मैं मैकबुक के सपनों में इतना डूबा रहूं कि मुझे और कोई चीज पसंद ही ना आए। मेरा फोन मुझे पसंद ना आए, मेरा जो प्रेजेंट पीसी है वो उसमें हर एक बार में बार बार बार बार मुझे खोट नजर आए,
1: जी
0: तो मैं हर समय टेंशन में रहूं, बुरा गुस्सा करता रहूं और बुरा मानता रहूं और दुखी रहूं। कई बार ऐसा हो जाता है
1: जी
0: कि हमारे मेरे पास कोई
1: हाँ
0: एक गाड़ी है, नहीं यार मुझे वो वाली गाड़ी मिलती तो ज्यादा अच्छा था।
1: हाँ थोड़ा हम डिसअपॉइंट या पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कि
0: करेक्ट
1: हमें ये नहीं मिल रहे हैं ना.
0: करेक्ट
1: नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है. मैं बहुत सुपर सुपर पॉजिटिव इंसान हूँ. मैं वर्स्ट में भी मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ कि नहीं इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला होगा.
0: ऑलराइट, दैट इज सो
1: जी
0: ब्यूटीफुल। बस यही तो बात मैं जानना चाह रहा था। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आती और जाती रहेंगी, लेकिन अगर
1: बिल्कुल
0: आप
1: बिल्कुल
0: शुक्रगुजार हैं, अगर आप
1: जी
0: ग्रेटिट्यूड में हैं, तो ये चीजें और आपके पास आएंगी। चिंता
1: बिल्कुल
0: मत करिए, बस शुक्रगुजार रहिए। क्या बात कह दी संध्या साहब आपने, थैंक यू सो मच। चलिए इसी बात पर ये प्यारे से गीत हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव दीज टू नंबर्स, एंजॉय।